सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों के

0: सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमा गाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए आज का चिंतन। विषय है कर्म ही सफलता का एकमात्र साधन।
2: कुछ व्यक्ति अपने जीवन में कर्म नहीं करके भाग्य के भरोसे निष्क्रिय बैठे रहते हैं। वे सोचते हैं कि जिस दिन भाग्य में होगा सारी आकांक्षाएं आपसे आप पूरी हो जाएंगी। इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वे तो मनुक दास के इस दर्शन को मानते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। यह भाग्यवाद का चरम है। वस्तुतः यह परले सिरे की काहिली है। यह निश्चित है कि ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते। उनका जीवन असफलताओं की कहानी बनकर रह जाता है। ऐसे काहिलों को ही ध्यान में रखकर 11वीं सदी के प्रसिद्ध दार्शनिक गजाली ने कहा है, कोई कोई समझते हैं कि संतोष के ये मायने हैं कि जीविका उपार्जन के लिए न हाथ फैलाइए न कोई उपाय सोचा जाए, बल्कि आदमी इस तरह बेकार पड़ा रहे कि जिस तरह चिथड़ा जमीन पर पड़ा रहता है या मांस पटरी पर रखा रहता है। लेकिन यह मूर्खों का विचार है। यदि तुम इस बात का इंतजार करो कि खुदा तुमको रोटी के बिना तृप्त कर देगा या रोटी को यह शक्ति दे देगा कि वह स्वयं तुम तक चली आए या किसी फरिश्ते को मुकर्रर कर देगा कि वह रोटी चबाकर तुम्हारे पेट में डाल दे, तो तुम खुदा के स्वभाव से बिल्कुल अनभिज्ञ हो। गजाली के इन शब्दों में जीवन का यथार्थ और कर्म के प्रति निष्ठा स्पष्ट है। भाग्य की बात करने वाले यह नहीं सोचते हैं कि यह एक भटकाव है, शुष्कों का एक सूक्ष्म अमूर्त षड्यंत्र है। भाग्यवादी व्यक्ति अपना समाज और देश का विकास नहीं कर सकता। जो देश समाज भाग्यवादी बन जाता है उसका विकास नहीं होता। कर्म ही जीवन में खुशियों के नए द्वार खोलता है। गीता में वेदव्यास ने कर्म का आख्यान किया है, कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहां फल के प्रति निसंगता के भाव की बात की गई है। कर्म ही फल

0: देता है उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, मात्र फल की चिंता कर्म में बाधक बनती है। कर्म पुरुषार्थ से जुड़ी वस्तु है, पुरुषार्थ ही कर्म के द्वारा असंभव को संभव कर दिखाता है। ऐसे ही व्यक्ति अपने जातीय जीवन को नई चेतना से संपन्न करते हैं, अपने देश का स्वरूप बदल देते हैं। विश्व में आज कई देश हैं जो अपनी पुरुषार्थी संतानों के कारण संसार को श्रेष्ठतम देशों में एक है। कर्म वहां के निवासियों का मूल मंत्र है। वे भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहते हैं, कर्म में उनकी अकंप निष्ठा होती है। वे जानते मानते हैं कि भाग्य के भरोसे बैठने से जातीय जीवन में जंग लग जाता है। कर्म ही उन्नति का मुख्य आधार है। कर्मशील व्यक्ति इतिहास को जैसा चाहता है बदल देता है। उसके जीवन में असंभव जैसी कोई वस्तु नहीं होती। नेपोलियन एक बार अपनी सेना को लेकर युद्ध की मुहिम पर जा रहा था कि सामने आलप से पर्वत आ गया। सेना रुक गई और कहा, सामने आलप से है। नेपोलियन ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, बहादुरों, समझो कि आलप से है ही नहीं, और उसकी सेना दुर्लंघे आलप्सी को पार कर गई। नेपोलियन कहता था, उसके शब्दकोश में असंभव शब्द है ही नहीं। उसका कहना था, इतिहास हमसे है, हम इतिहास से नहीं। हम इतिहास को जैसा बनाना चाहते हैं बनाते हैं, इतिहास हमें नहीं बनाता। नेपोलियन से कोई असहमत हो सकता है। अस्तित्ववादी चिंतकों का तो इसके विपरीत मत है कि इतिहास हम नहीं बनाते, इतिहास जैसा चाहता है हमें बनाता है। लेकिन नेपोलियन की बातों में एक आत्मविश्वासी का विश्वास बोलता है। इसको पैदा करने के लिए इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यह खुदी यूं ही नहीं आती, इसके लिए कर्म की आंच में जलना होता है। कर्म की आंच में तपा हुआ आदमी ही समय की दिशा बदलने में समर्थ होता है। धर्मवीर भारती के अंधा युग का याचक जो भविष्य दृष्टा है कहता है, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को। उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। वस्तुतः भाग्य रेखा मनुष्य स्वयं बनाता मिटाता है अपने कर्म से। कर्म ही सफलता का एकमात्र सूत्र है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, कर्म ही सफलता का एकमात्र साधन। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये भक्ति गीत।

अभी आपने सुना अनूप जलोटा और साथियों की आवाज में ये भक्ति गीत। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला भक्ति गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में।

अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये भक्ति गीत।

0: इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम वंदना यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी,
1: एपिसोड 33।

का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थी। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हट रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। कार्यक्रम विवरण के तहत अब आपको बता दे आज केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, 7:20 पर सुनेंगे कार्यक्रम काव्य धारा, गीत संगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, 8 बजे सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, 8:45 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग मेलोडी, 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, सुबह 10 बजे सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, 11 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। एक बजकर 10 मिनट पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, 1:20 पर सुनेंगे पुनः आप विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, 2:55 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, 3 बजे सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से, 4:02 से पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, संध्या 4:30 पर सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी, संध्या 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

संध्या 5:02 पर सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, 5:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी, संध्या 6:00 सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से, 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अंगना, फिल्म संगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर, 7:00 सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से, फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार ये आप सुनेंगे संध्या 7:15 पर, 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेलेंगे शान से, 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स, आपकी चाहत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:00, 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9 और 9:15 पर स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से, 9:30 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा, 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, और प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। ये थी आज केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शारदा सिन्हा की आवाज में भोजपुरी लोकगीत।

0: शारदा सिन्हा के गाए इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुनिए कार्यक्रम काव्य धारा के अंतर्गत शशि बाला की कविताएं।
1: भारत की धरती, ठहर ठहर पग धरो मुसाफिर, यह भारत की धरती है। महादेव की जटा जूट से गंगा यहाँ उतरती है। ठहर ठहर पग धरो मुसाफिर, यह भारत की धरती है। महादेव की जटा जूट से गंगा यहाँ उतरती है। पर्वत झरने जंगल सुंदर, बाग बावड़ी मन भावन, तीर्थ अनेकों इस धरती पर, काशी मथुरा वृंदावन। दसों दिशा में मुरलीधर की वंशी बजती रहती है। महादेव की जटा जूट से गंगा यहाँ उतरती है। धर्म विविध है लेकिन मन में देश धर्म ही बसता है। मर मिटने को तत्पर हरदम बच्चा बच्चा रहता है। ओढ़ तिरंगा घर आने की हसरत सबको रहती है। महादेव की जटा जूट से गंगा यहाँ उतरती है। वेद उपनिषद थाती इसकी है उन्नत विज्ञान, जहाँ देव भूमि यह तपो भूमि यह बसते अपने प्राण यहाँ। भक्ति भाव की अनुपम धारा अविरल बहती रहती है। महादेव की जटा जूट से गंगा यहाँ उतरती है। राम कृष्ण गौतम के पगरज बिखरे इसके कण कण में, राम कृष्ण गौतम के पगरज बिखरे इसके कण कण में, बसा तिरंगा श्वासों में और जन गण मन है धड़कन में। देश भक्ति की ज्वाला मन में सबके जहां धधकती है। महादेव की जटा जूट से गंगा यहां उतरती है। ठहर ठहर पग धरो मुसाफिर, यह भारत की धरती है। महादेव की जटा जूट से गंगा यहाँ उतरती है। ऐसा हो जाए तो कदमों को कभी ठोकर नहीं लगेगी, नजरें नीची रख पाए तो। कदमों को कभी ठोकर नहीं लगेगी, नजरें नीची रख पाए तो। पत्थर पर भी फूल खिलाएंगे, थोड़ी सी मिट्टी और पानी मिल जाए तो। ऊपर उठ जाएगी नन्ही पतंग भी, थोड़ा सा सहारा पहले पहल मिल जाए तो। घर भी स्वर्ग लगने लग जाएगा, संग मिलजुल कर खुशी खुशी रह पाए तो। धरती का आंचल ले ही लेगा आगोश में, आसमान से कोई गिर जाए तो। आकाश शनै शनै ऊपर उठ जाएगा, सूरज क्षितिज पर आकर जगमगाए तो। सफर हो जाएगा आसान बिल्कुल, कोई अपना राह में मिल जाए तो। जीवन भर जाएगा उजालों से, कोई अच्छा विचार अंतस में उग आए तो। ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो। कैसे अपनी बात कहूँ, उलझ रहे शब्दों के धागे कैसे और उलझने दूँ। क्यों ना चुनकर कुछ शब्दों को कविता में ही ढलने दूँ। उलझ रहे शब्दों के धागे कैसे और उलझने दूँ। क्यों ना चुनकर कुछ शब्दों को कविता में ही ढलने दूँ। शुरू कहाँ से करूँ कहाँ तक, बातों का क्रम चलने दूँ। शुरू कहाँ से करूँ कहाँ तक, बातों का क्रम चलने दूँ। किन लम्हों के चित्र खींच दूँ, किन किन को बस रहने दूँ। जिन यादों ने जकड़ लिया है मन के सारे तंत्रों को, क्या यादों के बंधन में ही उन तंत्रों को रमने दूँ। मेघ बरसते घने गगन से, नेह पिघलते भीतर भीतर, बाती मन की और सुलगती, सोचा आज सुलगने दो। उलझ रहे शब्दों के धागे थोड़ा और उलझने दो, कविता में ढलने से पहले उलझन का सुख मिलने दो। सोच रही हूँ मौन धरूं या वोटों को कुछ कहने दो। भीड़ बढ़े ना भावों की अब, दिल को हल्का रहने दो, दिल को हल्का रहने दो। उपहार इस प्रेम दिवस पर सोच रही हूँ क्या तुमको उपहार दूँ। इस प्रेम दिवस पर सोच रही हूँ क्या तुमको उपहार दूँ, आँखों के झिलमिल सपने या सपनों का संसार दूँ, आँखों के झिलमिल सपने या सपनों का संसार दूँ, हाथ बढ़ाकर थाम लो उंगली आज तुम्हारी आगे बढ़, हाथ बढ़ाकर थाम लो उंगली आज तुम्हारी आगे बढ़, या गले तुम्हारे डाल अभी मैं इन बाहों का हार दूँ, कदम मिला चलते चलने का वादा ही कोई कर लूँ, या लिख कर पंखुड़ियों पर अपने प्रीत का इजहार दूँ, राधा और मीरा जिस पथ पर चल कर जग में अमर हुई, राधा और मीरा जिस पथ पर चल कर जग में अमर हुई, उसी डगर पर संग चलने का तुमको मैं अधिकार दूँ, सोच रही हूँ प्रेम दिवस पर क्या तुमको उपहार दूँ, क्या तुमको उपहार दूँ। उसके पास डिग्रियां कम है, सही कहते हो, उसके पास डिग्रियां कम है, नहीं जानती वह किस लोकसभा क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ रहा, नहीं जानती कौन कितने समय तक सांसद रहे, वह तो यह भी नहीं जानती कौन सा मैच किस वर्ष जीते हैं हम, या किस शहर का नाम बदल कर क्या रखा जाने वाला है। ठीक ही कहते हो, कहाँ है डिग्रियां उसके पास, अब यह भी कोई मायने रखता है क्या कि तुम्हारे गुसल खाने से निकलते ही भीगा तौलिया धूप में टंग जाता है, पूजा समाप्त करते ही नाश्ते की प्लेट सामने आ जाती है, धूप से आते हो तो हाथों में ठंडे पानी का ग्लास क्षण भर में ही मिल जाता है, तुम्हें कब क्या चाहिए वह बिना कहे ही जान जाती है, यह भी कोई खास मायने नहीं रखता कि तुम्हारे बिछौने पर लेटते ही घर भर की बत्तियां बुझा दी जाती है, कोई आहट कोई शोर कोई आवाज फिर तुम्हारी नींद में खलल डालने की हिम्मत नहीं करती, अब इसे क्या कहें, वह भूलने लगी है आजकल पानी का नल खोलकर, दूध का पतीला चूल्हे पर रखकर और कमरे का पंखा चलता छोड़कर। ठीक ही कहते हो, डिग्रियां हैं ही कहां उसके पास, डिग्रियां हैं ही कहां उसके पास, कितना फर्क है, वे एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वे एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कहानियां लिखते हैं, कविता और लेख छपते रहते हैं उनके, कई पुरस्कार मिल चुके हैं उन्हें, उनसे मिलने की चाह लिए, उनके गली के कई चक्कर लगा लिए मैंने, नुक्कड़ के दुकानदार से पूछा, आसपास के घरों के द्वार भी खटखटाए, पास के मैदानों में खेलते बच्चों से पूछा, दो चार बुजुर्गों से भी जानना चाहा, जो चाय की गुमटी में बैठे गपशप में मशगूल थे, ताज्जुब हुआ, अत्यधिक ताज्जुब हुआ, पूरा नाम बताने पर भी कोई

0: उनका पता बता नहीं पाया। फिर तो मैंने उनके लेखों की चर्चा की, पुरस्कारों की भी, उनके विदेश गमन की भी, लेकिन भौचक थे वही लोग। कौन है ऐसा इस गली में, हमारे मोहल्ले में, इस शहर में, राम जाने। नहीं मिल पाई उस रोज, उनका फोन नंबर जो नहीं था मेरे पास। लौटते हुए सोचती रही, उस दिन चौधरी जी को भी तो ऐसे ही ढूंढने निकली थी। 2 किलोमीटर दूर के दुकानदार ने पोल के पास बैठे मोची ने और चना बादाम बेचते ठेले वाले ने एक स्वर में बता दिया था उनका पता ठीक ठीक बिल्कुल। भूखों को कई बार रोटियां जो दी हैं उन्होंने, ठंडी रातों में चादर और जरूरत के वक्त हर संभव मदद भी, यही फर्क है, यही फर्क। जूते के पैसे, आंचल की कोर में छोटी सी गांठ, गांठ में सिक्के, छुप कर कोने में वह गिनती है रोज सिक्के, छुपाती है उसकी निगाह से जो झपट लेने को रहता है आतुर। उसे क्या मालूम कैसे कर भरती है पेट तीन नन्नी जान के, उसे तो पसंद है बस आत्म मुक्त रहना, डंशे में डूब कर रहना, कोई खाए या भूखा सो जाए। दिन भर करती है मजदूरी, काटती है मैदान से घास, बनाती है गट्ठर, पहुंचाती है गौ मालिकों के द्वार तक, तब मिलते हैं पैसे। कुछ रखती है मुट्ठी में राशन पानी के जुगाड़ को, कुछ बांध कर गांठ में खोस लेती है कमर में। रोज अंधियारा गहराते छुप कर बैठती है कोने में और चुपके चुपके गिनती है पैसे। लेनी है उसे छुटकी के पाँव के जूते। बेटों को तो डालनी है आदत खुरदरी जमीन पर चलने की, नरम है लेकिन चुटकी के पाँव, छिल जाते हैं कंकर पत्थर से। कितनी छोटी सी ख्वाहिश, कितना बड़ा जतन मांगती है उस गरीब माँ से जो दिन भर खटती है खेतों में, घरों में, मैदानों में, मजदूरी के नाम पर पहाती है अथक पसीना, करती है जी तोड़ मेहनत पूरी लगन से। कोई शिकायत नहीं करती, बस डरती है नजर न पड़ जाए उस शराबी बाप की जो बिना एक पल गंवाए छीन सकता है अपनी कुमलांगी बिटिया के पाँव के जूतों के पैसे भी, जूतों के पैसे भी।
1: अभी आप सुन रहे थे शशि बाला की कविताएं। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब सुनिए कार्यक्रम गीत संगीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में ये गीत।

अभी आपने सुना शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में ये गीत। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत।

फाल्गुनी पाठक के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
2: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहेब और श्री अनंतपुर साहेब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे।

0: और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक

0: बीटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगनम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिडगम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं, पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, होर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है, खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मॉनसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है, 2 नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश। 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्य ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है, साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish-e-Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3 match series 1-1. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With its introduction, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. More from our correspondent.
3: India has set a new global benchmark with this project, surpassing many other nations currently testing this technology. While countries like Germany and China usually run 2 or 3 coach hydrogen trains, India has developed a 10 coach formation. It is designed to carry nearly 2,600 passengers, which is the highest capacity among compared hydrogen trains globally. This hydrogen train is powered by a 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames and smoke. The hydrogen facility has been established at Jind to enable safe, efficient and reliable hydrogen-powered rail operations. Anand Kumar, Akashwani News, Jind.
2: From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m. he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 4,700 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion. Subsequently, Prime Minister Modi will visit Jalandhar in Punjab this afternoon, where he will inaugurate and lay the foundation stone of rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. Our correspondent reports that these projects are aimed at strengthening connectivity, improve passenger convenience and accelerate economic development in the region.
4: Prime Minister will inaugurate 74 redeveloped railway stations across 20 states virtually from Jalandhar, including SAS Nagar Mohali Railway Station, Shri Muktsar Sahib Railway Station and Shri Anandpur Sahib Railway Station after personally inaugurating the Jalandhar Kent Station. These stations have been transformed under one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme. He will also flag off

0: Mohammed operatives held earlier this month. The five were produced before Judicial Magistrate R.M. Bhatia at Kari Town in Mehsana district, which remanded them in ATS custody till July 24th. Goa government has tightened regulations governing casino operations by prohibiting entry of persons below 21 years of age into casino gaming areas. The Home Department has issued a notification enforcing the new restriction. The notification also introduces stricter provisions regarding the payment of license fees for offshore casino vessels. Operators who fail to pay the annual license fee within the prescribed time will be liable to pay an 18% penalty. U.S. forces launched a fresh wave of military strikes against Iran last night, marking the sixth consecutive night of operations against the Islamic Republic following the collapse of peace deal between the both sides. According to the U.S. Central Command, the attack was aimed at further degrading Iran's military capabilities, as Tehran poses a threat to commercial vessels transiting through the Strait of Hormuz, which Washington claims. Meanwhile, Iranian state media reported that three people were killed and several others got injured after the U.S. targeted civilian infrastructure in their recent wave of strikes in Iran. In Keralam, the observance of Ramayan month begins today. More from our correspondent.
1: In Kerala, the Karkadaka month of Malayalam era is observed as Ramayana month, a time when devotees turn to the epic Ramayana for spiritual strength and peace of mind. Today marks the first day of Karkadaka. From the very first day of the Karkadaka month, the recitation of Ramayana becomes a daily ritual in many households and temples across Kerala. Special recitation sessions and devotional programs are also organized in temples during this period. Smithy M. Pallaruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: On to sports. In men's cricket, hosts England defeated India by 4 wickets in second ODI of 3-match series at Sophia Gardens in Cardiff last night to level the series 1-1. After being invited to bat first, Shubman Gill led men in blue and got bundled out for just 233 runs in 44 overs. Shreyas Iyer emerged as top scorer with 66 runs, while Virat Kohli also contributed 65 runs. In reply, hosts England comfortably overhauled the target in 45th over with 4 wickets in hand, as Joe Root scored unbeaten 99 runs and missed his turn by a run. Both the teams will now face each other in the series decider on Sunday at the iconic Lord's Cricket Ground. The India Meteorological Department has issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall conditions at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today. It has predicted heavy rainfall conditions over Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Jharkhand during the day. Similar weather conditions are expected over Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Uttarakhand, Vidarbha, West Bengal and Sikkim for the day. According to the IMD, isolated to scattered rainfall conditions are expected over Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab during the next 2 to 3 days. In Jammu and Kashmir, Meteorological Centre has forecast a significant change in weather across the Union Territory from tomorrow, with chances of heavy rain and flash floods in vulnerable areas. And now, for a look at today's newspapers, it's over to V.C. Pramod.
2: Thank you, Shagun. Most of the dailies have covered the Prime Minister unveiling various projects in Punjab, Haryana and Chandigarh to flag off India's first hydrogen power train. BIMSTEC National Security, ZARS, discuss ways to combat terrorism, organized crime, mentions the statesman, while the Asian Age writes BIMSTEC nations to bolster anti-terror, maritime law links. Equity model replaces grants. Center joins Ventura Capitals to invest in chip firms, informs the Financial Express. The Hindu writes, Parliament set to take up bills to amend FCRA, prevent insult to Vande Mataram. ED cracks alleged terror trail across 5 states, reads a headline in the Pioneer. The Tribune headlines, after over 100 resignations, Center tightens ISRO exit rules. Supreme Court flags third language timing, mentions the Pioneer. In editorial titled A Game Bigger Than Its Grand Spectacle, the Indian Express writes, as Spain and Argentina face off in what will be their first meeting in the FIFA World Cup since 1996, the finale promises a grand spectacle. Last-minute winners, comebacks, extraordinary underdog performances and teeming moments of individual brilliance have made sure that the football itself has never been overshadowed. The spotlight now falls on Spain and Argentina. And finally, the Times of India informs that about the first private orbital rocket launch on Saturday. The papers add Skyroot Aerospace is days from becoming India's first private space tech startup to launch an orbital class rocket. Vikram 1 is set to lift off at 11:30 from Sriharikota. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish-e-Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3 match series 1-1. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के पिस्का, मोरी और बिमलगढ़ रेलवे स्टेशनों का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, वर्चुअल उद्घाटन। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में कल और 20 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर रेलवे ने 26 जुलाई से 12 सितंबर तक रांची और भागलपुर के बीच 4 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का लिया निर्णय। झारखंड में संगठित अपराध पर अंकुश के लिए पुलिस ने विकसित किया C360 सॉफ्टवेयर, अपराधियों की निगरानी होगी और अधिक प्रभावी। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से झारखंड में बारिश का दौर जारी। आज खूंटी, गुमला, सिमडेगा सहित 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए झारखंड के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आज लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची रेल मंडल के पिस्का और मोरी स्टेशन तथा चक्रधरपुर रेल मंडल के बिमलगढ़ रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि इन रेलवे स्टेशनों को मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। यहां यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
4: हमने वायदा किया था यहाँ की जनता से कि हम इसको आनंद विहार बनाएंगे और देखो 5 साल बाद ये आनंद विहार के लुक में है, जिसमें 2 लिफ्ट लग गई है, प्लेटफार्म बन गए हैं, वेटिंग रूम सारा सब कुछ हो गया है, रैंप बन गया है। 8 लाइन का ये स्टेशन होने वाला है। अब इसके बाद भी जहाँ खाली जगह है वहाँ एक और बिल्डिंग बनने वाली है।
3: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत समय पर गणना प्रपत्र जमा कर रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं विशेषकर युवाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने बताया कि मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कल और 20 जुलाई को शहरी क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। खूंटी में गलत ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाए जाने के बाद एक आदिवासी महिला की मृत्यु के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी।
5: अस्पताल में गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वजह से रिएक्शन हुआ और मृत्यु हो गई। ये एक बड़ी चूक हुई कि इस तरह के घटना के वजह से उसका सजा एक गरीब परिवार।

0: अब इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रशासनिक तंत्र को ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करना चाहिए।
1: देवघर श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने 26 जुलाई से 12 सितंबर तक रांची और भागलपुर के बीच 4 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर स्टेशनों पर भी रुकेंगी, जिससे बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। ट्रेनों में जनरल, स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में C360 सॉफ्टवेयर विकसित किया है। पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक कौशल किशोर ने बताया कि यह सॉफ्टवेयर अपराधियों का डिजिटल डेटाबेस है, जिसे पुलिस के मोबाइल ऐप से भी जोड़ा जा रहा है। इससे अपराधियों की निगरानी और कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।
2: 360 के अंतर्गत हम लोग एक इस प्रकार का सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप किया है, जिसको कि हम लोग अपने प्रमंडल में लागू करने जा रहे हैं, जिसमें जो भी अपराधकर्मी हैं उनका एक तरीके से एक विस्तृत पोर्ट डिजिटल डेटाबेस के रूप में संधारित किया जाएगा, जिससे कि इस प्रकार के अपराधियों पर लगातार निगरानी की जा सके। साथ ही साथ उनके द्वारा अगर किसी प्रकार की घटना को पारित किया जाता है तो उनकी गिरफ्तारी में तुरंत इस प्रकार की सूचनाओं से हम लोगों को सहायता मिल सके।
1: रांची स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने लोहरदगा में कई स्थानों पर छापेमारी की। ये छापामारी इस मामले में न्यायिक हिरासत में बंद आरोपियों के आवास सहित कुछ अन्य ठिकानों पर की गई। तलाशी के दौरान कुछ डिजिटल सामग्री और अन्य साक्ष्य जब्त किए जाने की सूचना है, हालांकि NIA ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बोकारो जिले में प्रतिबिंब ऐप से मिली सूचना के आधार पर बोकारो पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने बताया कि सेक्टर 12 और मारफारी थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक दस्तावेज, डेबिट कार्ड और नकदी बरामद की गई है।
3: प्रतिबिंब के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई के आधार पर टोटल 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने साइबर अपराधियों की संलिप्तता स्वीकार की है। तो ये बैंक कर्मी बनके, कभी टूर एंड ट्रेवल्स का एजेंट बनके विक्टिम लोगों से बात करते थे, उसके बाद में जो बैंक अकाउंट है उन्हें अपना राशि मंगाते थे और उसको विड्रॉ करते थे।
1: झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति ने रामगढ़ का दौरा कर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समिति के सभापति रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों, पेंशन प्रकरणों तथा जनहितकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। समिति ने अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने और सभी विभागों से अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मौसम। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव वाले क्षेत्र के कारण राज्य के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। कल रांची सहित 10 जिलों लातेहार, चतरा, गुमला, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो और लोहरदगा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने NTA द्वारा जारी नीट UG री एग्जाम के नतीजे जारी किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है नीट का रिजल्ट जारी, सुहर्ष बने स्टेट टॉपर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, नीट यूजी में 720 का परफेक्ट स्कोर किसी को नहीं, 19 छात्र ही 700 पार। दैनिक जागरण लिखता है, कोर्ट ने कहा वर्षों पहले की गई जमाबंदी को राजस्व विभाग का अधिकारी नहीं कर सकता रद्द। हिंदुस्तान ने लिखा है, पूरी रथ यात्रा में भीड़ बढ़ने से अफरा तफरी, 2 की मौत। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के पिस्का, मुरी और बिमलगढ़ रेलवे स्टेशनों का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में कल और 20 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर रेलवे ने 26 जुलाई से 12 सितंबर तक रांची और भागलपुर के बीच 4 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का लिया निर्णय। झारखंड में संगठित अपराध पर अंकुश के लिए पुलिस ने विकसित किया C360 सॉफ्टवेयर, अपराधियों की निगरानी होगी और अधिक प्रभावी। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से झारखंड में बारिश का दौर जारी, आज खूंटी, गुमला, सिमडेगा सहित 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और साथ ही FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी रांची से प्रातःकालीन का प्रसारण आप सुन रहे हैं आभा के साथ।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी में आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म विश्वात्मा से यह गीत, साधना सरगम की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब सुनिए कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं सुलक्षणा पंडित और अनवर की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

कृष फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाजों में। नासिर फराज ने इसे लिखा था और राजेश रोशन का संगीत था। बंटी और बबली फिल्म का गीत आपको अब सुनवा रहे हैं सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर की आवाजें। गुलजार की बोल है शंकर एहसान लॉय की तर्ज।

0: सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में बंटी और बबली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाजों में फिर हेरा फेरी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। समीर ने इसे लिखा था, हिमेश रेशमिया ने इस गीत की तर्ज बनाई थी। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार। आज बातें एक ऐसी अदाकारा और गायिका की जिन्होंने अपने आगमन से ही फिल्मी दुनिया में मचा दी थी हलचल। उनकी आवाज के सभी थे इतने कायल कि हर गाना होता था सुपरहिट। पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में तब कदम रखा था जब फिल्में होती थीं बेआवाज। उन्होंने जीता दिल क्योंकि था उनका अलग ही अंदाज। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज बातें होंगी अभिनेत्री और गायिका कानन देवी की।

कानन देवी एक अदाकारा और गायिका ही नहीं थी बल्कि वो तो फिल्मी दुनिया में महिलाओं के लिए एक पहल बनकर आई, क्योंकि ये वो दौर था जब तथाकथित सभ्य समाज की महिलाओं का फिल्मी दुनिया में आना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। कानन देवी आगे चलकर भी फिल्मी दुनिया में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में अग्रणी रही और कई काम भी उन्होंने इसके लिए किए, लेकिन वो बातें बाद में। अभी पहले सुन लेते हैं कानन देवी की वो आवाज़ जिसने अपने नाम कर ली थी लाखों दिलों की।

करण देवी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मात्र 10 साल की उम्र से ही कर ली। वो दौर मूक फिल्मों का था। मूक फिल्मों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने बोलने वाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो बांग्ला की पहली स्टार कही जाती रही हैं। पहली फिल्म 1926 में आई, जिसका नाम था जयदेव। बोलने वाली फिल्मों के दौर में कानन देवी ऐसी अभिनेत्रियों में भी अग्रिम पंक्ति में आती हैं, जो पर्दे पर खुद के लिए गाया भी करती।

तकरीबन चार दशकों तक कानन देवी फिल्मी दुनिया में सक्रिय रही। मूक फिल्मों से उन्होंने बांग्ला फिल्मों की ओर अपने करियर को आगे बढ़ाया। वो कई बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ फिल्में करती रही। वो दौर ऐसा था जब अभिनेता अभिनेत्री फिल्म थिएटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम किया करते थे, जिसमें उनका प्रति महीने का एक निश्चित वेतन तय किया जाता था और इसके बदले एक निश्चित समय के लिए अभिनेता अभिनेत्री उनके अलावा किसी और के साथ काम नहीं किया करते थे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कानन देवी ने उस समय कोलकाता के मशहूर फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर के साथ करार किया। इसके पहले और बाद में भी अन्य कई बैनर्स के साथ वो करार में रही, जैसे मदन थिएटर, ज्योति थिएटर, राधा थिएटर आदि। उन्हें इस दौर की अभिनेत्रियों से ज्यादा मेहनताना भी दिया जाता था, क्योंकि कानन देवी के अभिनय के साथ साथ उनके गीत सफलता के अलग पायदान छुआ करते।

0: चलो मतवाले, झूम रही है आली अम्मा की डाली, झूम रही है आली।
1: यहाँ कानन देवी के सफलता के किस्से सुनकर हम उनके कायल हो रहे हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उन्होंने सफलता के शिखर को छूने के लिए कड़ी मेहनत से काम लिया। 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जन्मी कानन देवी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता के व्यसन की आदत के कारण पहले गरीबी का सामना करना पड़ा और बाद में पिता के गुजर जाने के बाद नन्ही कानन देवी पर बचपन से ही माँ और स्वयं के जीवन यापन का बोझ भी आ गया। यहीं से शुरुआत हुई उनके अभिनय जीवन की।

इतनी छोटी सी उम्र से ही फिल्मी पर्दे पर मूक फिल्मों में काम की शुरुआत करने के कारण कानन देवी ने तो ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है, जिसमें उस दौर में फिल्मी दुनिया में आई महिलाओं की स्थिति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने बेबाक अंदाज में अपने कई सह अभिनेताओं की असुरक्षा की भावना का भी उल्लेख किया है। कानन देवी उन पहली अभिनेत्रियों में से एक रहीं जिन्होंने हिट फिल्मों के फायदे में एक हिस्से की बात निर्माता निर्देशकों के सामने रखी। उनकी आत्मकथा शोबेर आमी नोमी यानी सभी को मेरा नमन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी बात रखने में निडर थीं।

अपने अभिनय जीवन में एक लंबे समय तक बांग्ला फिल्मों में सक्रिय रहीं। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मी दुनिया का रुख किया। ये उनके जीवन का वो समय भी रहा जब उन्होंने खुद को हर करार से मुक्त करके अलग अलग निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में काम करने का साहस किया। आगे चलकर कानन देवी ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और अपना एक बैनर शुरू किया जिसका नाम रखा श्रीमती पिक्चर्स।

कानन देवी की कई फिल्में बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ बनी और दोनों ही इंडस्ट्री में हिट भी रहीं। उनके कुछ ऐसे ही फिल्मों में शामिल हैं विद्यापति, मुक्ति, स्ट्रीट सिंगर, लगन, सपेरा, जवाब और अनन्य। कानन बाला के नाम से फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे उन्हें कानन देवी का नाम मिल गया और वो इसी नाम से मशहूर हैं। कानन देवी उस जमाने के तकरीबन सभी मशहूर सितारों के साथ फिल्मों में नजर आईं। इनमें नाम शामिल हैं कुंदनलाल सहगल, पंकज मलिक, पहाड़ी सान्याल, छवि बिस्वास, पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर, अशोक कुमार और न्यू थिएटर के मालिक प्रथमेश चंद्र बरुआ, जिनके साथ उनकी कई फिल्में आईं।

नंदन देवी संगीत से पहले ही जुड़ी हुई थीं और उनकी आवाज भी लोगों के दिलों तक पहुंचा करती थीं। लेकिन उनके संगीत जीवन में एक मोड़ तब आया जब वो मिली संगीत के जादूगर रायचंद बोराल से। आरसी बोराल ने कानन देवी को हिंदी की बारीकियां भी सिखाई और उन्हें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत और भारतीय संगीत सीखने के लिए भी प्रेरित किया। कानन देवी ने उस्ताद अल्लाह रखा से संगीत की तालीम ली। उनकी आवाज में अब मधुरता के साथ साथ रियाज का जादू भी नजर आने लगा। बात जब कानन देवी के गायन की हो रही है तो यहाँ जवाब फिल्म में उनका गाया वो गीत याद आता है जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। तो चलिए सुनते हैं वो गीत।

कानन देवी की आवाज में ये इकलौता ऐसा गीत नहीं है जिसे चाहने वालों ने रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने ये काम इसके बाद भी कई बार किया। एक समय आया जब कानन देवी को अभिनय से अलग एक गायिका के रूप में सम्मान मिला, और ये वो समय था जब मेगाफोन ग्रामोफोन ने एक गायिका के रूप में उन्हें रिकॉर्ड्स के लिए अनुबंधित किया। सफलता एक ओर लोगों के मन में घमंड भी ले आती है, लेकिन कानन देवी ऐसी नहीं थी। मौका मिला तो उन्होंने इसे जिम्मेदारी समझी और तैयारी के लिए उन्होंने भीमसेन चटर्जी और आनंदी दस्तीदार से संगीत की तालीम ली। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब कानन देवी को उस दौर में उनके गीतों के रिकॉर्ड्स की बिक्री के कारण हर 3 महीने में रॉयल्टी के 25,000 रुपए मिलते थे।

कानन देवी एक ओर जहां लगातार सफलता हासिल कर रही थीं, वहीं वो फिल्मी दुनिया और समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी लगातार विचार कर रही थीं। उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने वाली वृद्ध अभिनेत्रियों के भरण पोषण के लिए महिला शिल्पी महल नामक संस्था की स्थापना की और उसे अपने खर्च पर लंबे समय तक चलाती रहीं। उन्होंने अपने काम में खुद को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी के साथ साथ संस्कृत साहित्य की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, अंग्रेजी सीखना, विदेश में जाकर फिल्मों से जुड़े कई विषयों की शिक्षा भी ली। ये बताता है कि वो केवल सफलता के पायदान ही नहीं चढ़ रही थीं, बल्कि अपने निजी उत्थान और खुद को तराशने की दिशा में भी काम कर रही थीं, जिसका असर भी पूरी तरह नजर आ रहा था।

आनंद देवी ने अपने जीवन में जब भी ये महसूस किया कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ तो उन्होंने उस ओर कोई न कोई ऐसा निर्णय भी लिया जिससे आगे आने वाली अभिनेत्रियों के सामने एक मिसाल कायम हुई। जैसे कि उन्होंने जब फिल्मी दुनिया में अभिनेताओं के समान मेहनत आने की बात की तो उन्हें मना कर दिया गया। ये बात उन्हें नागवार गुजरी और उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना काम करने की ठान ली। उनका ये कदम उनके सशक्त व्यक्तित्व को दर्शाता है।

अपनी खूबसूरती, अदाकारी और गीतों के लिए मशहूर कानन देवी ने फिल्मों में भी अलग अलग किरदार निभाए। उस जमाने में प्रचलित घरेलू और बेचारी महिला का किरदार उन्होंने जितनी आसानी से निभाया, उतनी ही सरलता से वो एक मॉडर्न और सशक्त विचारों वाली महिला के किरदारों में भी ढली। पर्दे पर उनके किरदार महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बनकर सामने आया करते। वो निजी जीवन में भी इसी तरह सशक्त, प्रगतिशील विचारों का आईना बनकर सामने आती।

कानन देवी के प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली तो लंदन के हाई कमीशन में इस समारोह में मुख्य अतिथियों में से एक बनकर वो शामिल हुई। उनके गीत और भाषण इस समारोह में भारतीय गर्व को बढ़ा रहे थे। कानन देवी एक बहुचर्चित सोप कंपनी के विज्ञापन में भी ली गई, जिसे आज तक केवल चर्चित अभिनेत्रियों को शामिल करने के लिए जाना जाता है।

सानन देवी को फिल्मी दुनिया में उनके योगदान के लिए 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1976 में उन्हें फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा भी समय समय पर वो कई सम्मान पाती रहीं। कानन देवी 17 जुलाई 1992 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं और अपने पीछे छोड़ गईं अपनी बहुमूल्य विरासत और सशक्त सोच।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और गायिका कानन देवी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम का संपादन सौरव घारू। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

दोस्तों, कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही अंजलि का प्यार भरा नमस्कार जोहार। दोस्तों, हंसना जीवन की सुंदरता है, पर वह हंसी तभी सार्थक है जब किसी के हृदय को पीड़ा न पहुंचे। सपने देखना आवश्यक है, पर ऐसे नहीं कि किसी और की शांति और नींद छिन जाए। उन्नति करना हर व्यक्ति का अधिकार है, पर सच्ची तरक्की वही है जो किसी को गिरा कर नहीं बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़े। सफलता प्राप्त करना श्रेष्ठ है, पर यदि सफलता के बदले संस्कार, विनम्रता और मानवता खो जाए तो वह सफलता अधूरी है। ईश्वर की दृष्टि में वही व्यक्ति महान है जो अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में सुख, सम्मान और प्रेरणा का प्रकाश फैलाता है। जीवन में ऐसे बनो कि आपकी सफलता से किसी को दुख नहीं बल्कि प्रेरणा मिले। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे ढेर सारी बातें होंगी, अभी साथ मिलकर सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। आज 17 जुलाई है तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल 17 जुलाई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय की आधुनिक प्रणाली को बढ़ावा देना, पीड़ितों के अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाना और नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अपराधियों को जवाबदेह ठहराना है। इतिहास की बात करें तो 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाया गया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मनाने का निर्णय 1 जून 2010 को युगांडा के कंपाला में हुए रोम संविधि की समीक्षा सम्मेलन में लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की भूमिका, आईसीसी पहला अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब बात करेंगे जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। तो जल शक्ति अभियान यानी कैच द रेन भारत सरकार का एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान है, जिसकी टैग लाइन कैच द रेन, जहां वर्षा हो जब वर्षा हो। इसका उद्देश्य है मानसून पूर्व और मानसून के दौरान वर्षा जल के अधिकतम संचयन और भूजल पुनर्भरण को सुनिश्चित करना है। इसके लिए सरकार के कुछ प्रमुख पहले भी

हैं अमृत 2.0 का विस्तार। इसमें है कि अवसान एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अमृत 2.0 के तहत सभी शहरों में जल निकायों के पुनर्जीवन और जल सुरक्षा के उपाय लागू किए गए हैं। भूजल पुनर्भरण संरचनाएं भी इसमें काम कर रही हैं, तो जल शक्ति मंत्रालय के साथ समन्वय करके देश भर के नगर निगमों और स्थानीय निकायों के माध्यम से लाखों भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही उथले जलभृत प्रबंधन की भी व्यवस्था है, तो वैज्ञानिक जलभृत मानचित्रण के जरिए वर्षा जल को गहरे जल स्तर तक इंजेक्शन बोरवेल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के विशेष मॉडल अपनाए गए हैं। साथ ही जल शक्ति केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं, तो प्रत्येक जिले में तकनीकी की मार्गदर्शन के लिए जल शक्ति केंद्र या रेन सेंटर स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही इसमें जन भागीदारी भी है, जैसे कि नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्थानीय समुदायों के माध्यम से जमीनी स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाकर इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया गया है। इसके बारे में आगे भी बातचीत करेंगे, अभी साथ मिलकर सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे कैच द रेन अभियान के बारे में, तो अब जानते हैं कि इसकी उपलब्धियां क्या है। तो इसका व्यापक कवरेज है। इस अभियान का विस्तार देश के सभी ग्रामीण और शहरी ब्लॉकों तक किया गया है, जिसमें 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 9

100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और जल निकायों का कायाकल्प भी हुआ है। अमृत 2.0 के अंतर्गत किसी भी जगह का है कि स्लाइट हटाने, जैव विविधता संवर्धन और तट संरक्षण के माध्यम से लगभग 1.21 लाख एकड़ शहरी जल निकायों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके साथ ही लाखों रिचार्ज स्ट्रक्चर भी हैं। विभिन्न नगर निगमों और निकायों द्वारा लगभग 1.99 लाख भूजल पुनर्भरण संरचनाओं पर काम शुरू किया गया है और हजारों अतिरिक्त संरचनाएं निर्माणाधीन भी है। इसके साथ ही दोस्तों शहरी और हरित क्षेत्रों का विकास भी हुआ है। तो जल संरक्षण के साथ साथ शहरों में तापमान को कम करने और जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए भी काफी काम किया जा रहा है। इसमें क्षेत्र विशेष में सफलताएं भी हासिल हुई है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में जैसे ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, कोरबा, वर्धमान और विजयनगर में स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाकर प्रभावी परिणाम हासिल किए गए हैं। तो इस अभियान से लोगों को काफी लाभ भी हो रहा है, तो इसकी जानकारी लेकर सभी लाभ ले भी सकते हैं। तो आगे भी बातचीत करेंगे, अभी साथ मिलकर सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, आज 17 जुलाई है तो जानते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। तो कल यानी गुरुवार को तो आसमान साफ था और धूप भी निकली थी, लेकिन आज है कि मौसम साफ रहने के साथ साथ बूंदाबांदी होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। और तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। कल यानी 18 जुलाई के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि कल का तापमान अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और आज सूर्यास्त का समय है 6:44 और कल यानी 18 जुलाई को सूर्योदय का समय है 5:11 पर। आर्द्रता की बात करें तो अधिकतम आर्द्रता 82% है और न्यूनतम 62%।

दोस्तों, अब नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। तो आज ही के दिन 1948 में भारतीय महिलाओं को पहली बार भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस सहित सभी सार्वजनिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने की पात्रता मिली थी। आज ही के दिन 1996 में तमिलनाडु की राजधानी मद्रास को आधिकारिक नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। 1947 में आज ही के दिन भारत के विभाजन के दौरान रेड क्लिफ लाइन की रूपरेखा पर चर्चा तेज हुई, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय की। 1955 में आज ही के दिन अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में पहला डिज्नीलैंड पार्क जनता के लिए खोला गया। 2010 में आज ही के दिन दुनिया भर में पहली बार विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। आज ही के दिन 1976 में इंडोनेशिया ने पूर्वी तिमोर को अपना 27वां प्रांत घोषित कर दिया।

दोस्तों, अब नजर डालते हैं समाचार की सुर्खियों पर। तो भव्य रथ यात्रा में उमड़ा जैन सैलाब, 40 फीट ऊंचा सबसे बड़ा रथ बना आकर्षण का केंद्र। भाई और बहन के साथ मौसीबाड़ी पहुंचे भगवान। एसआईआर अभियान, जोबर पंचायत की बीएलओ को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ट्रामा सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। डीसी ने लिया संज्ञान, प्रशिक्षु आईएएस ने लिया जायजा। आपातकालीन सेवाओं पर दिया जोर।

आज शिक्षा संबंधी समीक्षा बैठक है डीईओ कार्यालय परिसर में 11:30 से।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से अंजलि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: Nine, eight, seven, six,

0: हजारीबाग।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

ढोलक की थाप दूर दराज के महलों तक सुनाई दी। जब उसे खबर मिली तो वो भी पहुंचा। खिड़कियों दरवाजों से झांक झांक कर उसकी नजर पकड़ने की कोशिश करता रहा। मेहंदी सजी दुल्हन तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। एक सहेली दुल्हन के लिए चाय की प्याली लेकर आई। उसने तो मांगी नहीं थी। सहेली की आंख ने झपक कर कहा, पी लो, कप में पैगाम भी है। कप की तह में उसने अंगूठी रखकर भेजी थी। अंगूठी होंठों से पी ली और उंगली में पहन ली। सहेली की मेहंदी लगी हथेली पर उसने लिखकर भेज दिया, उसी सनसेट पर मिलना जो पुल पर मिला था।

लेकिन संदेशा पहुंचा नहीं, वो जा चुका था। पल भर में सब बदल गया, और कुछ भी नहीं बदला, जो बदला था वो तो गुजर गया।

यह आवाज है भूपेंद्र सिंह की। आप सुन रहे हैं गुलजार साहब की ये रचना। संगीत दिया है विशाल भारद्वाज ने। इससे पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में एक भजन।

0: ये आप सुन रहे थे गुलजार साहब का ये कलाम।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

कार्यक्रम में आप सुनिए अभिजीत की आवाज में एक गैर फिल्मी गीत। रचनाकार हैं सुब्रत और संगीतकार सप्तऋषि।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अनूप जलोटा के संगीत निर्देशन में हम आपको हरीश चंद्र का लिखा ये भक्ति पद सुनवा रहे हैं। आवाज पामेला सिंह की है।

0: समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आइए आप सुनते हैं मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में ये गजल।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए, ये शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से अवाम के दिलों की आहट सुन लेता है। ये रात जो लोगों के दर्द की रात है, अवाम के गम की रात है, जब उसके सीने में गूंजती है तो वो तलाश करने लगता है ये आवाज कहां से आ रही है, इनकलाब किस रास्ते से आ रहा है और दर्द किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। वो कान लगाए सुन रहा है और वक्त से पूछ रहा है ये किसकी सदा है।
5: भूपेन हजारिका की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलजार साहब की ये रचना।

ये आवाज थी भूपेन हजारिका की। और आइए अब सुनते हैं कैलाश खैर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत।

0: देवी पलुस्कर की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भक्ति पद सुना।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी उन्नत

0: पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हुर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कुछ खास गीत। जी हाँ, आज जानी मानी अभिनेत्री जरीना वहाब का जन्मदिन है, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस कार्यक्रम में हमने जरीना वहाब की फिल्मों से ही कुछ गीत चुने हैं, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सावन को आने दो, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा था गौहर कानपुरी ने और धुन बनाई थी राजकमल ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: कार्यक्रम का अगला गीत, यशुदास की आवाज में फिल्म चितचोर से हमने लिया है। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

यशोदास की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म चितचोर का ये गीत। और लीजिए अब सुनिए एन दत्ता का संगीत, पंडित भरत व्यास की बोल, आवाज सुमन कल्याणपुर की, और फिल्म का नाम गोपाल कृष्ण।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए गुलजार साहब की लिखी रचना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने और ये फिल्म है सितारा।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज आप सुन रहे हैं अभिनेत्री ज़रीना वहाब की फिल्मों से कुछ गीत। आइए सुनते हैं फिल्म नैया का गीत। इसे आवाज दी है हिमलता ने। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म दहलीज का दो गाना सुनिए, स्वर आशा भोंसले और महेंद्र कपूर के हैं, गीतकार हैं हसन कमाल और संगीत रवि का है।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत हमने नक्श लायलपुरी का लिखा हुआ चुना है। इसे संगीत में डाला है जयदेव ने, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है जी। जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक और एक 11। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनने वाले हैं। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोसले, शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इसी कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुलक्षणा पंडित और साथियों का गाया हुआ फिल्म जज्बात का गीत, शब्द महेंद्र देहलवी के और धुन राजकमल की।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने मशहूर अभिनेत्री जरीना वहाब की फिल्मों से कुछ गीत सुने थे।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर, ये कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इबारत पढ़कर आप सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, है ना? क्योंकि आज की इबारत बिल्कुल साफ इशारा कर रही है कि आज सुरीले सफर में होने क्या वाला है, है ना? हमारे श्रोताओं ने, यानी हमारे दोस्तों ने पूरे के पूरे आज गीत लिख दिए हैं जो हमारे गीत इस कार्यक्रम में बजने वाले हैं। और जिन श्रोताओं ने इस इबारत को जब और गहराई से पढ़ा तो उन्होंने इस बात को भी समझा कि उद्घोषक महोदया आज क्या कुछ नया लेकर आई हैं। जी हाँ, ये सभी बातें हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि फेसबुक पेज पर जब आप अपनी टिप्पणियां हमें लिख रहे हैं, हम उन्हें पढ़ रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तब पता चल रहा है कि हमारे श्रोता आज बहुत खुश हैं। और इस इबारत में पूरे के पूरे गीत जो हमने आज चुने हैं आपके लिए, लगभग आपके वही गीत हमें भी नजर आ रहे हैं। और हाँ, जिन श्रोताओं ने, जैसा कि हमने कहा कि जिन श्रोताओं ने इस इबारत को और गहराई से पढ़ा और ये समझा कि उद्घोषक महोदया आज क्या कुछ नया लेकर आई हैं, तो वो समझ गए हैं कि आज हम लेकर आए हैं कुछ शीर्षक गीत। जी हाँ, शीर्षक गीत, जैसे फिल्म आवारा का गाना है, आवारा हूँ, ऐसे ही कुछ गाने आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो शीर्षक गीत हैं उस फिल्म का। और दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि ये शीर्षक गीत अक्सर फिल्म के मुख्य संदेश या केंद्रीय भाव पर आधारित होते हैं और कोई भी गीतकार गीतों के जरिए सीधे दर्शकों के दिलों से जुड़ना चाहते हैं और इन फिल्मों की आत्मा उनके गीत में नजर आ जाती है, जिन्हें शीर्षक गीत के माध्यम से और ज्यादा बताया जाता है। मतलब फिल्मों के शुरुआती और सुनहरे दौर में शीर्षक गीत लिखने की जो परंपरा थी वो बहुत सारे गीतकारों ने शुरू की, जैसे कि शैलेंद्र साहब, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी। इन्होंने मुख्य रूप से फिल्म के प्रचार और थीम को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इसे अपनाया और शीर्षक गीत हमारे लिए रचा। तो चलिए, आज इस सुरीले सफर में आप सभी हमारे साथ हैं, हमें उम्मीद है, क्योंकि आज का ये सुरीला सफर बहुत साफ सुथरा है, पथरीला नहीं है, कांटों से भरा नहीं है, फूल ही फूल है। और हमें अपना मार्ग, अपना पथ पता है कि आज सुरीला सफर, ये सफर कहाँ तक का है। तो चलिए, निकल पड़िए इस सुरीले सफर पर।

0: प्यार का सागर। जी हाँ, ये था फिल्म का नाम जिसका दो गाना अभी आपने मुकेश और आशा भोंसले की आवाजों में सुना। गीतकार प्रेम धवन थे और संगीतकार थे रवि। और हाँ, हम देखिए ना, इतनी खुशी में आज की इबारत आपको बताना ही भूल गए, क्योंकि जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि आज की इबारत क्या है। लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं उसी इबारत को पढ़ने के बाद उन्होंने समझा कि आज का ये जो सुरीला सफर है उसमें क्या होने वाला है। हाँ, हम अपने नए श्रोताओं से ये जरूर कहना चाहेंगे कि www.facebook.com/bbsmumbai पर जाकर आप विविध भारती परिवार की जो टीम है, सदस्य हैं, उससे जुड़ सकते हैं, यानी विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, अपने विचार हम तक लिख सकते हैं। तो आज की इबारत है कि प्यार का सागर जब किसी की आंखों में उमड़ता है तो दिल किसी गहरे एहसास से लबालब हो जाता है, आंखों ही आंखों में बातें होने लगती हैं। यकीनन जब प्यार किसी से होता है तो प्यार का मौसम प्यार ही प्यार बरसाता है। आशिक दिल कह उठता है, तुमसे अच्छा कौन है, कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। सुनो, दिल ने फिर याद किया है तुम्हें, हाँ अब वो दिन दूर नहीं, बस समझो लग गई है महबूब की मेहंदी तुम्हारे हाथों में, यादों की बारात लेकर हम आ रहे हैं तुम्हारे राजकुमार। और हमारे श्रोताओं ने भी हमारी इबारत पढ़ने के बाद अपने विचार हम तक लिखे हैं। आप लिखते हैं कि आज गद्यांश पूरी तरह प्यार का सागर लेकर आया है। प्यार का एहसास एक ऐसी दिव्य और भावपूर्ण अनुभूति है जो जीवन को असीम लालित्य, सुंदरता और सार्थकता प्रदान करती है। ये केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा का एक स्पंदन है जो दो हृदयों को एक अदृश्य डोर से बांध देता है। प्यार मन को कोमलता, धैर्य और गहरी शांति प्रदान करता है, जिससे जीवन की आपाधापी भी एक मधुर संगीत सी प्रतीत होती है। इसके प्रभाव
1: से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। स्वच्छ और टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में बड़ा कदम। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन अब सदर अस्पतालों से होगा। नई एम्बुलेंस की खरीद तक सिविल सर्जनों की देखरेख में चलेगी व्यवस्था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम किए घोषित। 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल। नामकुम भूमि हेरफेर मामले में एसीबी ने शुरू की प्रारंभिक जांच। हाईकोर्ट को दी जानकारी, राज्य सरकार ने दी पीई की मंजूरी। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
2: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2,600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है।

0: यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन अब राज्य के सदर अस्पतालों से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई एम्बुलेंस की खरीद तक यह सेवा संबंधित जिलों के सिविल सर्जनों की देखरेख में संचालित होगी। नई एम्बुलेंस की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है।
2: ऐसी एजेंसी पे हम FIR दर्ज करने जा रहे हैं। आप जब काम नहीं कर सकते तो काम लिए क्यों? तक नई एजेंसी नहीं आ जाती है। जितना भी हमारा एम्बुलेंस है सदर हॉस्पिटल में आप जमा कर दो। अब 21 तारीख को आपात बैठक हम कर रहे हैं। उस बैठक में हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि 108 जितनी भी खराब एम्बुलेंस हो या अच्छा एम्बुलेंस वो सदर हॉस्पिटल चलाए।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित कर दिए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। नामकोम अंचल में भूमि खरीद बिक्री और राजस्व अभिलेखों में कथित हेरफेर के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिकारियों के विरुद्ध प्रारंभिक जांच की अनुमति दे दी है। ACB ने आज झारखंड उच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ में हुई। यह मामला नामकोम अंचल के डुंडुक क्षेत्र में भूमि के दाखिल खारिज से जुड़ी कथित अनियमितताओं से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य न्याय का समर्थन करने, पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने और विश्व की शांति, सुरक्षा तथा कल्याण को खतरे में डालने वाले अपराधों को रोकने में मदद करने के इच्छुक सभी लोगों को एकजुट करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान IIIDEM में अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का विषय है हितधारकों को जोड़ना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना और चुनावों में मीडिया की भूमिका। सम्मेलन में चुनाव प्रक्रिया में मीडिया की भूमिका, जिम्मेदार रिपोर्टिंग और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गढ़वा जिला प्रशासन मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने के लिए अभियान चला रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने बताया कि अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
3: SIR की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से चल रही है और डिस्ट्रीब्यूशन काम लगभग समाप्त हो गया है। दोनों विधानसभा में, बनाकपुर में तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है और अप्रोचिंग गढ़वा का भी 100% हो चुका है। डिजिटाइजेशन में तेजी आई है और हम समझते हैं कि 2 दिनों के अंदर डिजिटाइजेशन का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा।
1: इधर लोहरदगा

0: विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को गणना प्रपत्रों का वितरण शत प्रतिशत पूरा हो गया है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीणा ने बताया कि लगभग 2 लाख मतदाताओं के भरे हुए प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन भी पूरा कर लिया गया है। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने लोगों से डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से राखी भेजने की अपील की है। उन्होंने कहा कि डाक से भेजी गई राखी का अपना विशेष भावनात्मक महत्व होता है।
1: डाक विभाग के स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी राखी स्वयं बनाकर या स्व सहायता बहनों के माध्यम से जो राखी बिकती है उन राखियों को खरीदकर लोकल फॉर वोकल का संदेश देते हुए अपनी भावनाओं से इस रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को जोड़ते हुए हम इसे और मजबूत बनाएं और अपने भाइयों की कलाई को और मजबूत करें।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 766 अंक बढ़कर 77,953 जबकि निफ्टी 196 अंक की बढ़त के साथ 24,269 पर कारोबार कर रहा था। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। हजारीबाग के ईचाक प्रखंड में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण धान की खेती प्रभावित हो रही है। समय पर पर्याप्त बारिश नहीं होने से धान की नर्सरी सूखने लगी है और खेतों में नमी की कमी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। नदियों तालाबों और आहरों में भी जलस्तर कम होने से सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। क्रिकेट, इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। स्वच्छ और टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में बड़ा कदम। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन अब सदर अस्पतालों से होगा। नई एम्बुलेंस की खरीद तक सिविल सर्जनों की देखरेख में चलेगी व्यवस्था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल। नामकुम भूमि हेरफेर मामले में एसीबी ने शुरू की प्रारंभिक जांच। हाईकोर्ट को दी जानकारी। राज्य सरकार ने दी पीई की मंजूरी। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये शीर्षक गीत सुना। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज पहली बार मंदाकिनी जी की इबारत भी लंबी है। लंबी इबारत हो तो मैं कार्यक्रम नहीं सुनता, पर आज अवश्य सुनूंगा, क्योंकि मंदाकिनी जी की अविरल कलकल बहती नदी जैसी आवाज की वजह से क्या बात है। जैसे अरे लता मंगेशकर जी का हर गाना सुना जा सकता है उनकी आवाज की वजह से, चाहे गीत के बोल और संगीत कैसा भी हो, तब कोई भी गाना बुरा नहीं लगता। उसी प्रकार लंबी इबारत को भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन केवल आज तक। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन एक बात बताइए, इबारत तो बहुत छोटी सी थी। हम तो कोशिश यही करते हैं कि जितनी कम शब्दों में अपनी बात कही जाए वो ज्यादा बेहतर, और हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हमारी इबारत थोड़ा सरल हो, ताकि हमारे श्रोता जो है परेशान नहीं हो और इस सुरीले सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहे, है ना। एक श्रोता ने लिखा भी है इसके बारे में, आगे मैं उनके विचार पढ़ने वाली हूँ, बड़ा ही मस्त लिखा है उन्होंने। वही एक श्रोता अभी लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम भीगतावासा प्यारा सा है, नमस्कार आपको, हमारा आज की इबारत तो पूरी प्यार से भरी है, आपके साथ दोपहर 1 बजे मजा दोगुना हो जाएगा, और आपने आज की टेक्स्ट से निकलने वाले संभावित शब्दों पर गाने भी लिखे हैं जो लगभग मुझे लगता है सारे ही सही हैं, ऐसा लग रहा है। एक आध गाना शायद नहीं हो सकता, बाकी आप खुद चेक कीजिएगा कि हमारी जो गानों की आज महफिल में हमने चुने हैं गीत, वो आपके गीतों से मेल खा रहे हैं या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में प्रेम की गहराई का वर्णन खूबसूरती से किया है, फिल्मों के नाम को जोड़कर सुंदर गानों से इस एहसास को और मजबूत किया गया है। आपने भी फिल्मों के बहुत सारे नाम लिखे हैं, लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा तू प्यार का सागर है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये गाना फिल्म सीमा का है ना, और हमने आज चुना है शीर्षक गीतों का कार्यक्रम, यानी प्यार का सागर जब हमने गीत बजाया था तो उसकी फिल्म का नाम भी था प्यार का सागर, है ना, समझ आए ना आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में प्यार का सागर उमड़ने वाला है, वो भी किसी की आंखों में, और फिर आंखों ही आंखों में बात होगी, तो प्यार की बरसात होना बहुत ही लाजमी है। दिल आशिकाना होकर किसी को याद करेगा तो महबूब की मेहंदी सुंदर हाथों में लग जाती है, क्योंकि यादों की बारात लेकर राजकुमार जी आने वाले हैं। प्यार का सागर देखा है किसी के, ये गीत तो जरूर बजना चाहिए, बज भी गया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में फिल्मों के नाम और गीतों की पंक्तियां हैं, ये केवल हमारी भावनाओं का आईना ही नहीं बल्कि प्रेम की सच्ची भाषा है। इनमें प्रेम की मिठास, बिछड़ने का दर्द, मिलने की खुशी, यादों की गर्माहट है। जब दिल में प्यार का सागर हो, हाथों में महबूब की मेहंदी का रंग हो, साथ में यादों की बारात हो, तब जिंदगी किसी खूबसूरत फिल्म से कम नहीं होती। कितना सुंदर लिखा है आपने, और मुझे लग रहा है कि जब आज प्रेम उमड़कर आया है इस सफर में, तो लोगों के दिल से प्रेम की बौछारें होने लगी हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रेम हमारी जरूरत है, ये प्यार है ना, ये स्नेह, ये इश्क, अलग अलग तरीके से किया गया जो प्यार है, अलग अलग रिश्तों में किया गया प्यार है, लेकिन मूल भाव उसका है प्यार, जिसकी हर इंसान को, हर प्राणी को बहुत जरूरत है। आप देखिए आप में कितने सुंदर विचार लिख डाले हैं आज प्यार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्यार का मौसम फिल्म का ये शीर्षक गीत सुनते हैं, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। इससे पहले हम अपने सवालों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमने आपसे पूछा था छोटा सा सवाल कि आपको कौन सा शीर्षक गीत पसंद है, किसी एक गीत का जिक्र आपको करना है, और हमारा दूसरा सवाल ये था कि कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत 1949 में आई एक फिल्म से लिखा गया था, आपको बताना है ये फिल्म जो 1949 में आई थी वो कौन सी थी, इसके गीतकार जो कि महान गीतकार कहलाए वो कौन थे, क्योंकि उनकी भी ये पहली ही फिल्म थी। इतना हमने आपको क्लू दे दिया है, हिंट दे दिया है। और हाँ, 1949 में आई इस जो टाइटल ट्रैक की सफलता हुई वो इतनी बड़ी थी दोस्तों कि इसके बाद से ही टाइटल सॉन्ग्स का चलन तेजी के साथ शुरू हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।

जी हाँ, ये है फिल्म का नाम प्यार का मौसम। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

हमारे श्रोता का लिखना है कि आज कुछ इस प्रकार के गीत बजने वाले हैं जो कि दिल की गहराइयों को छू जाएंगे, जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी गहराई से इस बात को समझा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत की पहली सवा दो लाइन में चार फिल्मों के नाम और फिल्मी गीत लिखे गए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो इबारत में ही कई फिल्मों के नाम है, अब देखना है कि गीत कौन से सुनने को मिलते हैं। तो आपने देख लिया, सुन लिया ना कि आज हमने कौन से गीत चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत पसंद आई, कम से कम फिल्मों के नाम तो क्लियर है, दिमाग को मेहनत कम और सुकून ज्यादा मिलेगा। ज्यादा उलझी हुई इबारत देने की कोई जरूरत भी नहीं होती है, ये गीतों के आनंद देने का लेने का कार्यक्रम है, कोई एमए हिंदी का पेपर नहीं जहां अनसीन पैसेज हल कराया जा रहा हो। अरे आपने इतना गंभीरता से ले लिया इस बात को, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कार्यक्रमों में जब भी कोई इबारत लिखी जाती है तो गानों के आधार पर ही लिखी जाती है। कई बार आपको लगता होगा कि इबारत बहुत कठिन है और इसमें कौन से गाने बज जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब आपको हिंट दी जाती है कुछ इबारतों में कि आज क्या बजने वाला है ना। तो इसे आप हिंदी का पेपर, एमए हिंदी का पेपर नहीं समझें। ये वाकई एक दिलचस्प प्रोग्राम है जहां सिर्फ हमें उस सुरीले सफर का आनंद लेना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से हमने जो शब्द चुना वो है प्यार। प्यार के बिना तो पूरी इबारत मानो सुनी। प्यार शब्द ने इस इबारत को बड़ा ही प्यारा बना दिया है। प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जितना इसे बांटा जाए उतना ये दिलों में बढ़ता है। कुछ एहसास शब्दों में नहीं समाते हुए बस मुस्कान बनकर, चेहरों पर अपनत्व बनकर रिश्तों में उतर जाते हैं। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस अपनापन मांगते हैं। दो मीठे शब्द, एक सच्ची मुस्कान और दिल से निकला एहसास। बहुत गहरी बात आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब दिल में प्यार का सागर उमड़ता है तो आंखों में ही अनकही बातें होने लगती हैं। फिर जीवन में प्यार का मौसम दस्तक देता है और मन बरबस कह उठता है, तुमसे अच्छा कौन है। बिछड़ने और मिलने के बीच भी दिल ने फिर याद किया कि मधुर धुनें दिल में गूंजती रहती हैं। जब रिश्तों की डोर और गहरी होती है तो हाथों में मेहंदी सजती है और खुशियों की यादों की बारात साथ लेकर सपनों का राजकुमार जीवन में प्रवेश करता है। यही तो प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी इबारत पेश की है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार कोई बड़ा इजहार नहीं बल्कि छोटी छोटी बरवाहों का नाम है। किसी की मुस्कान की वजह बन जाना, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना, हर हाल में उसका साथ निभाने की चाह, यही तो सच्चे प्यार की सबसे खूबसूरत पहचान। एक प्यारी सी बात, सच्चा प्यार फूलों की खुशबू की तरह होता है, उसे जोर से पकड़कर नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसका एहसास लंबे समय तक दिल में महकता रहता है। सच मानिए, आपका ये प्यार भी हमारे दिल में महकता है। और देखिए, इसलिए तो हम अब जो गीत लेकर आए हैं उसमें सिर्फ प्यार होगा। हाँ, फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार। आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

जी हाँ, हमारे श्रोताओं ने हमारे सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। एक श्रोता लिखते हैं कि शायद आपका जो सवाल है कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत किस फिल्म के लिए लिखा गया, शायद फिल्म बरसात है और बरसात में हमसे मिले तुम सजन ये गीत हो सकता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया का सबसे पहला शीर्षक गीत फिल्म बरसात से था और इसके गीतकार थे शैलेन्द्र। जी हाँ, और वहीं श्रोताओं ने और भी अपने सवालों के जवाब में लिखा है कि संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सलमान खान की फिल्म साजन जब रिलीज होने वाली थी उसके थोड़े दिन पहले ही साजन फिल्म का टाइटल सॉन्ग लिखा गया और फिल्माया गया और फिल्म में डाला गया था, यानी ये गीत इन्हें बेहद पसंद है फिल्म साजन का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा शीर्षक गाना है फिल्म नजराना का, जिसे मोहम्मद रफी ने गाया, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार रवि हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही प्यारा गीत चुना है। एक प्यासा मुझे मैखाना दिए जाता है, जाते जाते भी ये नजराना दिए जाता है। बहुत सुंदर गीत है रफी साहब की आवाज में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शायद 1949 आई फिल्म बरसात पहली फिल्म थी जिसमें शैलेन्द्र जी ने बरसात में जब मिले हमसे तुम सनम तुमने ये गाना लिखा था। बिल्कुल सही जवाब है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सर्वाधिक शीर्षक गीत लिखने का रिकॉर्ड भी शैलेन्द्र के नाम पर ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि

0: आपके सवालों के जवाब हैं बूंद जो बन गई मोती, ये शीर्षक गीत सटीक इसलिए बहुत प्यारा लगता है, यानी बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का जो गीत है वो आपको पसंद है शीर्षक गीत। वहीं आप लिखते हैं कि दूसरा बरसात में हमसे मिले तुम सजन 1949 का पहला शीर्षक गीत है और गीतकार थे शैलेंद्र। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 1949 में सबसे पहली फिल्म बरसात में शैलेंद्र जी ने बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम इस गीत की रचना की थी जिसे शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही सरल और प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात शीर्षक गीत मुझे पसंद है, पर इसके अलावा भी पसंदीदा गीतों की लिस्ट बहुत लंबी है, हम आपके हैं कौन ये गाना भी हमें बहुत पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि 1949 की प्रथम टाइटल संगीत राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म बरसात में मिले हमसे तुम सजन ये गीतकार शैलेंद्र की रचना है जो सबसे पहली मानी गई है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पसंदीदा शीर्षक गीत है दिल मेरा एक आस का पंछी, बहुत सुंदर गीत है ये। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने मेरा मनपसंद गीत जब प्यार किसी से होता है बजा ही दिया है, ये गीत मुझे बहुत पसंद है। और एक श्रोता को दीवानो अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन मैं हूं डॉन डॉन, यानी डॉन फिल्म का गीत इन्हें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि अखियों के झरोखों से आश्चर्य की बात है कि जिनकी आंखों की ज्योति बचपन से बुझी हुई थी ऐसे महान गीतकार और संगीतकार रविन्द्र जैन ने इसकी रचना की, ये गाना टॉप गाना था और इन्हें बहुत पसंद है ये गाना। और एक श्रोता को यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे जो हमारी लिस्ट में शामिल है, ये गाना बेहद पसंद है। और एक श्रोता को सफर फिल्म का गीत है जिंदगी का सफर ये कैसा सफर कोई समझा नहीं, बहुत पसंद आता है। वहीं श्रोताओं को बहुत सारे गीत पसंद आए हैं, किसी को महबूब की मेहंदी फिल्म का टाइटल गीत बहुत पसंद है और किसी श्रोता को दिल एक मंदिर का टाइटल गीत पसंद है। वहीं श्रोता ने लिखा है कि आपके सवालों का उत्तर हमने दे दिया है फिल्म बरसात और सवाल के उत्तर यानी शैलेंद्र। अरे हमने कोई प्रश्न पत्र थोड़ी रखा, ये तो हमारे कार्यक्रम के सवाल हैं जो हम सभी पूछते हैं अलग अलग तरीके से। कभी पूछा जाता है कि इस फिल्म का नायक कौन है, कभी पूछा जाता है नायिका कौन है, इस फिल्म में क्या था, आपने इस फिल्म को क्या देखा। तो हमारा सवाल भी इसी तरह से होता है कि आपकी पसंद का कोई शीर्षक गीत हो तो बताइए, या हमारी फिल्मी दुनिया में पहला शीर्षक गीत कब लिखा गया। तो इस तरह से ये सवाल जवाब ही इस कार्यक्रम को, इस सफर को अच्छा बनाते हैं ऐसा हम मानते हैं और यकीनन आप भी मानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का शीर्षक गीत, रचनाकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: कभी हमने नहीं

होगी और जान हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुम से

प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने

है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा

जी, तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुहाना सफर में सबसे शुरू हुआ नियमित सुनता हूँ, इसमें बार बार वही घिसे पीटे गीत और विषय रिपीट हो रहे हैं। 70-80 के दशक गीत बिल्कुल नकार दिया, वही सुनकर बोरियत लगती है, जिसमें रहस्य शिक्षा प्रेरणा हो वर्तमान जीवन को लाभान्वित करे। आपको क्या आज के गीत भी पसंद नहीं आए? बताइएगा हमें। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ ऐसे गीत बजाए जाएं जो आपको अच्छे लगते हैं और कार्यक्रम में रोचकता लेकर आए, है ना। आज के गीत आपको कैसे लगे इसके बारे में बताइएगा। हो सकता है आपकी पसंद हमारी पसंद से न मिलती हो, लेकिन हमारा उद्देश्य हमेशा बहुत ही सकारात्मक होता है कि हमारे श्रोताओं का हम उद्घोषक कितना अच्छा मनोरंजन कर सकते हैं, वही कोशिश हमेशा यानी हर बार होती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जब तक खुद को प्यार का सच्चा मतलब न पता हो तो प्यार महबूब महबूबा मौसम झरना पानी पहाड़ फूल सावन ये सिर्फ शब्द होते हैं, लेकिन जब सच्चा प्यार होता है तो इन शब्दों में पूरा जीवन दर्शन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही सुरीला है, मैं ट्रेन का सफर कर रही हूँ, ये सफर और साथ में विविध भारती का साथ सफर और भी सुरीला हो गया है। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, बादल भी लुका छिपी खेल रहे हैं, बहुत सुंदर। आप कार्यक्रम भी सुन रही हैं और प्रकृति को भी महसूस कर रही हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार का सागर जब आंखों में उमड़ता है तो दिल गहरे एहसास से लबालब हो जाता है और तब यहाँ हृदय की भाव विवल अवस्था बन जाती है, जहाँ प्रियतम प्रेम में रस की अनुभूति को गहराई से महसूस करने लगता है और उनके आपस में संवाद शब्दों से नहीं होते, क्योंकि इस परिस्थिति में शब्द मौन हो जाते हैं। आंखों आंखों में जो संवाद होता है उसकी अलग भाषा होती है और किसी भी व्याकरण की सीमा से परिभाषा होती है, न कोई अल्प विराम न पूर्ण विराम, बस आंखें बोला करती हैं और आंखें ही सुना करती हैं। क्या बात है, बहुत खूब। यहाँ प्रेम की अवस्था दिव्य रोशनी के साथ उनके प्रेम को एक अलौकिक आनंद से परिपूर्ण कर दिया करती हैं। यहाँ एक गीत की पंक्तियां साझा कर रहा हूँ, होठ झुके जब होठों पर सांस उलझी हो सांसों में, दो जुड़वा होठों की बात कहो इन आंखों में, मेरी जा मुझे जा न कहो। अरे वाह, फिल्म अनुभव का गीत आपने लिखा है और बहुत ही सुंदर आपने अपनी बात अपनी इबारत लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और महबूब की मेहंदी हाथों में लगा लेते हैं। आवाजें लता मंगेशकर, हेमलता और साथियों की, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बोल।

जी, तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज आपके द्वारा प्रस्तुत की गई इबारत और गीतों में प्यारी प्यार से लबालब है और झलक रहा है। मेरी माता रानी से तहे दिल से प्रार्थना है कि सभी की झोली और जीवन में सच्चा प्यार बढ़े, ये मेरी दुआ है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत आपकी मधुर उत्स्फूर्त पेशकश और सभी शीर्षक गीतों को हम शीर्षक दे रहे हैं परिपूर्ति। वाह क्या बात है, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई एक गीत नहीं अपितु विषय के अनुसार विभिन्न प्रकार के गीत हमें प्रिय हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि से अच्छा कौन है, बल्कि विविध भारती से अच्छा कोई नहीं हो सकता। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर अपने पूरी रफ्तार से मुकाम की ओर है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं और उन सभी श्रोताओं से हम थोड़ा सा मुआफी मांगते हैं कि उनकी जो पसंद है उन्होंने लगातार, बहुत सारे श्रोताओं ने अपने शीर्षक गीतों की पसंद हम तक लिखी है, लेकिन कार्यक्रम में समय का अभाव है, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम उन बातों को शामिल करें। बहरहाल कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, अंतिम पेशकश ये है।

ये आवाजें किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की थी। फिल्म का नाम था यादों की बारात। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन।

जी हाँ, हमारे आंगन में भी इसी तरह हम नाचेंगे गाएंगे और नए सुरीले सफर पर फिर निकल पड़ेंगे किसी एक दिन और, है ना। तो तब तक के लिए, यानी उस नए सुरीले सफर में चलने तक के लिए, मंदाकिनी जोशी को दे दी इजाजत, फिर मिलूंगी। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघुरूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 37वीं कड़ी।

वंदे मातरम, ये शब्द और इस गीत को व्यापक रूप से लोगों के सामने लाने का, या यों कह लें सबसे पहले जन जन तक पहुंचाने का श्रेय श्री अरविंद घोष को ही दिया जाना चाहिए। बंकिम चंद्र जी के साहित्य और वंदे मातरम

0: उस मुकदमे के कारण श्री अरविंद को देश भर में सब जानने लगे और वंदे मातरम पत्र की बिक्री और भी बढ़ गई।
1: अगस्त 1907 के वंदे मातरम के अंक में उन्होंने नेशनल कॉलेज के छात्रों के सामने दिया गया अपना भाषण लेख के रूप में प्रकाशित किया था। उसमें उन्होंने कहा था,
2: हमारी मातृभूमि के इतिहास में आज ऐसा समय आ चुका है कि उसकी सेवा के सिवा अन्य सभी कुछ गौण हो जाता है और सभी की शक्तियों का उस एक ही जगह केंद्रित होना आवश्यक हो जाता है। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो वो उसी के लिए करें। अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्तियां मातृभूमि की सेवा के लिए खर्च करें। केवल उसी के लिए आप धनार्जन करें। आपकी महानता का उपयोग अंततः मातृभूमि के लिए ही होना चाहिए, इतना कि उससे देश बड़ा हो जाए, इतना बड़ा कि पूरे संसार के राष्ट्रों में उसका सिर सबसे ऊंचा रहे। प्राचीन काल में जैसे अन्य सभी देश मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर ही देखते थे, वही जगह आपको उसे फिर से दिलानी होगी।
1: वंदे मातरम के लिए लिखा गया बहिष्कार की नैतिकता, ये लेख सरकार ने जब्त कर लिया और अलीपुर मुकदमे में सबूत के तौर पर पेश किया था। उस लेख में श्री अरविंद ने लिखा था,
2: राजनीतिक नैतिकता में न्याय और सात्विकता का स्थान है, ये सच है, परंतु वो नैतिकता एक योद्धा की नैतिकता होती है, धर्मगुरु की नहीं। अकारण किया गया आक्रमण अन्यायपूर्ण साबित होता है। दुष्ट हेतु से की गई उन्मत्त हिंसा भी निंदनीय है, लेकिन कोई तकनीकी नियम सभी कृतियों पर एक साथ लागू करना और उन्हें आपत्तिजनक कहना दर्शन का उपहास है, या उस दर्शन के किसी एक वाक्य की चौखट में संपूर्ण मानव जीवन को ठूंसने का प्रयास भी निंदनीय ही है।
1: उस समय भी वंदे मातरम इस समाचार पत्र के संपादक के रूप में श्री अरविंद नहीं बल्कि विपिन चंद्र पाल का ही नाम था। वंदे मातरम में लेखन के लिए संपादक के रूप में नाम वाले विपिन चंद्र पाल पर चल रहे मुकदमे का फैसला आया और उन्हें 6 महीने कारावास की सजा हुई। वो दिन था 26 अगस्त 1907। न्यायालय के बाहर हजारों नागरिक खड़े थे। भीड़ को विपिन चंद्र पाल के दर्शन हुए और सारी भीड़ वंदे मातरम का जय जयकार करने लगी।
0: वंदे मातरम के शब्दों का उच्चारण करते हुए लाठी चार्ज को सहजता से झेलने की तैयारी युवाओं में थी, परंतु आज कुछ अलग ही हुआ। निहत्थे लोगों पर बेतहाशा लाठी चार्ज करने वाले उस गोरे सार्जेंट पर भीड़ में से एक लड़का दौड़ कर गया और पल भर में उस लड़के ने उसे एक जोरदार घूंसा मारकर जमीन पर गिरा दिया। आज तक सिर्फ जनता को मारने की आदत वाले उस गोरे सिपाही के लिए मार खाने का ऐसा अनुभव नया ही था। उस नन्हे लड़के को वहीं पकड़ लिया गया और 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। 15 साल के उस लड़के को सड़क पर लाया गया। सरेआम चौराहे पर उसकी नंगी पीठ पर चाबुक के कोड़े बरसने लगे। अत्यधिक वेदना होने पर भी उसके मुंह से चीखें या दर्द की कराहें नहीं निकल रही थीं, बल्कि हर कोड़े के साथ उस लड़के के मुंह से केवल यही शब्द निकल रहे थे, वंदे मातरम। फिर दूसरा कोड़ा, फिर वंदे मातरम।
1: आसपास की भीड़ क्रोधित हो गई थी। पीठ लहूलुहान हुआ वो लड़का अंततः बेहोश हो गया, परंतु होठ वंदे मातरम कहने के लिए हिलते ही रहे। उस लड़के का नाम था सुशील कुमार सेन। ये खबर पूरे कलकत्ता में

फैल गई। सुशील कुमार के असामान्य धैर्य के सम्मान में 28 अगस्त को सभी महाविद्यालय बंद रखे गए। वरिष्ठ नेता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने सुशील कुमार सेन को स्वर्ण पदक प्रदान किया। उस दिन कलकत्ता में लोग यही गीत गा रहे थे।

हे माँ, वंदे मातरम का उच्चारण करते हुए प्राणों का बलिदान करने में हमें जरा भी दुख नहीं होगा। क्या कोई पुलिस की लाठी का सामना करते हुए अपनी माँ को भूल जाएगा? हम सब इस प्रिय माता के ही पुत्र।

के 7 वर्ष बाद 1915 में क्रांतिकारियों की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए सुशील चंद्र ने वंदे मातरम कहते हुए ही मातृभूमि के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ये सारा प्रभाव था वंदे मातरम शब्दों का। वंदे मातरम इस

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष। अभी आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 37वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों

0: के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
0: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
4: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारत

0: भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म और मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल

0: सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

फिल्म काला बाजार का गीत था ये, आवाज आशा भोसले की थी, शब्दकार शैलेंद्र थे और धुन सचिन देव बर्मन की थी। यह आवाज है लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। श्रोताओं, इससे पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गर्लफ्रेंड का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

उनका नाम है चांद मेरे आजा, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीतकार आई एस कपूर हैं और संगीत चित्रगुप्त का है।

0: यह आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था चांद मेरे आजा। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम की अगली पेशकश इकबाल कुरैशी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म बिंदिया।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे।
2: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जिंद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिससे दिल्ली से कटरा का सफर 6 घंटे का रह जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।
3: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो उसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
2: संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले सरकार ने 19 जुलाई को संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। रांची में झामुमो सांसद महुआ मांझी ने परिसीमन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस समेत कोई भी दल परिसीमन का विरोध नहीं कर रहा है। हालांकि बैठकों के आधार पर उन्होंने कहा कि असली चिंता परिसीमन आयोग को लेकर है और लोगों में इसकी निष्पक्षता को लेकर संदेह बना हुआ है।
4: परिसीमन से दरअसल किसी को विरोध नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं है। विरोध इस पर है कि परिसीमन आयोग जो बनेगा, उस आयोग में जो लोग रहेंगे वो कितने फेयर तरीके से परिसीमन करेंगे। जो भी विपक्षी पार्टियां जो अपोजिशन में है केंद्र में, उनके खिलाफ ही हो सकता है परिसीमन जाए। देश में विपक्ष रहेगा ही नहीं फिर, सिर्फ लोकतंत्र में फिर एक ही पार्टी अगर लोकतंत्र को चलाएगी तो आप समझ सकते हैं किस तरह से तानाशाही शुरू हो सकती है।
2: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट पर है। 30 जुलाई से शुरू होने वाले इस मेले के लिए देवघर और दुमका सहित पूरे 105 किलोमीटर लंबे कांवर पथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक सोमवार को उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए

0: बिहार पुलिस के साथ विशेष समन्वय बनाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें झारखंड के सुहर्ष कुमार गुप्ता 99.97% के साथ स्टेट टॉपर बने हैं। वहीं रांची के ज्ञानेंद्र गर्व ने भी बेहतरीन सफलता पाई है। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होने पर ज्ञानेंद्र निराश जरूर हुए, लेकिन माता पिता के सहयोग से उन्होंने दोबारा तैयारी की। उनका सपना डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना है।
1: मैं पूरे 2 साल का मेहनत लगता है, मुझे वापस देना पड़ेगा इसी सेम एग्जाम को। डेफिनेटली बहुत बुरा लग रहा था, फिर कोचिंग में एग्जाम्स वापस शुरू हो गया, फिर एग्जाम्स देते देते मेरा वापस लाइक मूड आ गया पढ़ाई का, फिर मैं पढ़ाई कर एकदम में वापस आ गया। मेरे जो दोस्त है, मेरे पेरेंट्स है, वो सब मेरा मोटिवेशन हाई रखते थे। सब लोग बोलते थे कि तुम्हारा वापस भी अच्छा ही जाएगा, नहीं पूरा सोचना चाहिए। और दूसरा मैं बोलूंगा, कोचिंग में जो एग्जाम्स होते थे वो मुझे बहुत हेल्प किए वापस पढ़ाई करने में।
0: धनबाद के गोल्फ ग्राउंड स्थित गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस्कॉन अध्यक्ष प्रेमदास ने बताया कि 19 जुलाई तक चलने वाले इस उत्सव में भव्य मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिदिन 60,000 लोगों के लिए महाप्रसाद की विशेष व्यवस्था है।
2: गोल्फ ग्राउंड में गुंडीचा मंदिर बनाया गया जो ठीक मेरे पीछे है, और यहाँ पर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा विराजमान है। अगले 4 दिन तक जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा यही रहेंगे और प्रत्येक दिन सुबह से शाम कभी भी आकर दर्शन ले सकते हैं। यदि किसी को आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है तो उसके लिए बुक स्टॉल्स हैं, कई सारे हमारे ग्रंथ वितरण हो रहे हैं। जहाँ जगन्नाथ जी है उसके बगल में कल्चरल पंडाल, जहाँ 4 बजे से 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम से।
0: राज्य में मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रांची, खूंटी और गुमला सहित 10 से अधिक जिलों में मूसलाधार बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में आज से 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। 21 जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में राज्य के सभी 5 प्रमंडलों की 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें अंडर 15 और अंडर 17 बालक बालिका वर्ग के मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। जब हो अपनों का साथ तो मजबूत रहते हैं हाथ, जीवन की हर कठिन राह आसान लगने लगती है जब परिवार, मित्र और शुभ चिंतकों का साथ मिलता है। अपने केवल सुख के साथ ही नहीं होते बल्कि कठिन समय

0: शक्ति और सबसे बड़ी पूंजी है। चलिए देखें आज कौन से शहर से कौन सी हमारी सखी हमसे अपनी बातें करने वाली है। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली।
1: हाँ जी, हेलो सहेली से बोल रहे हैं। मैं नीतू बोल रही हूँ, जोधपुर से मैडम।
0: अच्छा, आप जोधपुर से बोल रहे हैं, यानी कि राजस्थान से, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: आपने बताया जोधपुर से रहती हैं, तो वहाँ पे क्या बहुत ही प्रसिद्ध चीज है, पहले तो ये बताइए हमें।
1: मैम जोधपुर का तो मिर्ची बड़ा बहुत फेमस है।
0: मिर्ची बड़ा यानी बहुत अच्छी चीज, मुझे बहुत पसंद है।
1: और मैम बारिश के मौसम में आप खाओगे ना, जब वहाँ पे खड़े खड़े, तो आप सोचोगे एक नहीं मैं चार खा लूँ। हमारे
0: ये तो होता है, ये तो होता है। तो और ये तो चलिए खाने की चीज हो गई, वहाँ पे देखने लायक कौन सी चीज है?
1: मैम आप आइए मंडोर उद्यान देखिए, यहाँ का हमारे पैलेस देखिए, उम्मेद भवन जिसको बोलते हैं।
0: अच्छा हाँ, उम्मीद भवन, बहुत सुना है इसके बारे में।
1: बहुत से सेलिब्रिटीज की यहाँ पे शादियां ऑर्गेनाइज होती है।
0: तब तो आपके जोधपुर में खूब चहल पहल होती रहती होगी सेलिब्रिटीज की, तो अच्छा लगता होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारा नया एयरपोर्ट बनवाया गया है, रिनोवेशन हुआ है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो यानी आने वाली ऐसी जगह है जिसको देखना चाहिए जाके जरूर, है ना?
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: घर में मैम मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, भाई है, भाभी है, और मेरे दो भतीजियां हैं।
0: अरे वाह, तब तो भतीजियों के साथ खूब मस्ती चलती होगी, है ना?
1: बिल्कुल, उनका नाम ले।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल लीजिए।
1: एक बड़ी वाली है हर्षिता और छोटी वाली है पुलकिता।
0: अरे
1: पुलकिता का आज 7th मंथ का बर्थडे है।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बधाइयाँ छोटी सी पुलकिता को, बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है, हर्षिता का भी और पुलकिता का भी। बहुत
1: दादा ने नाम रखे हैं, हर्षिता नाम रखा था।
0: हाँ जी,
1: तब सेकेंड हुई है।
0: अच्छा,
1: बोले पुलकिता रखेंगे इसका।
0: वही मतलब वही है, हर्ष उत्तरा पुलकित हो ना। अच्छा, बहुत अच्छा नाम रखा है। और बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, ये बताइए मुझे, आपके शौक क्या है?
1: मैं तो मैं घर का काम करती हूँ।
0: घर के काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ एक शौक होता है ना कि हम ये करें, इसमें हमें बहुत मन लगता है करने में, वो कौन सा काम है? वो डांस भी हो सकता
1: मैं
0: है।
1: जॉब करती हूँ।
0: अच्छा, आप जॉब करती हैं? अरे क्या बात है, आप सरकारी नौकरी में?
1: नर्सिंग ऑफिसर हूँ मैं।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो सरकारी नौकरी में भी हमारे कुछ अपने जो शौक होते हैं, जैसे कोई डांस किसी को पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी मतलब अलग अलग चीजें होती है, किसी को खेल पसंद होता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, तो आपको क्या पसंद है?
1: मैम गाना तो मेरे को तो कोई आता नहीं, मैं रेडियो जरूर सुनती हूँ, साथ साथ वैसे गा लेते हैं, पर वो वाली सिंगिंग नहीं।
0: अच्छा,
1: लेकिन डांस का है तो वो शौक होता है, कभी कभी कर लेते हैं घर पे
0: जब थक के आते हैं आप, है ना, जॉब से।
1: बिल्कुल।
0: ये अच्छी चीज है, ये इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वो हमें थोड़ा तरोताजा कर देती हैं थोड़ी देर के लिए,
1: बिल्कुल,
0: है ना? हम जो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थक के आते हैं वहां पे, जो जॉब की परेशानियां होती हैं, वो सब चीजों से हम जब जूझ के आते हैं ना, तो एक कुछ थोड़े से जो पल होते हैं ना, वो हमें ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल हम उसमें अपने मन का काम करें, है ना?
1: बिल्कुल मैडम।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: बारिश का मौसम है, मॉनसून सीजन है, तो मेघा रे मेघा रे।
0: अरे क्या गाना सुना है आपने, बहुत बढ़िया गाना है। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। गुजरात सूरत से बात कर रही हूँ मैं।
0: अच्छा, सूरत से बोल रही हैं आप।
1: जी
0: तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है। पहले तो सूरत के बारे में बताइए कि वहां पे क्या ऐसी चीज है जो हम देखने आ सकते हैं वहाँ आपके पास।
1: सूरत में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं,
0: अरे
1: ड्रेस
0: वाह,
1: बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं।
0: अच्छा, यहाँ वहाँ के कपड़े मशहूर हैं बहुत ज्यादा, है ना।
1: वहाँ के कपड़े बहुत मशहूर है, सब
0: अच्छा,
1: दूर दूर से हमारे एरिया में कपड़े खरीदने आते हैं।
0: अरे क्या बात बताई आपने, तो बहुत अच्छी चीज हमें पता चली है।
1: वो जो सलमा मैडम बेचते हैं ना, नए नए आए, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: बहुत
1: उन्होंने
0: अच्छी
1: की
0: बात है।
1: फिर नेहा जी की, फिर पूजा जी की, फिर आपकी, ममता दीदी की, इन
0: हाँ
1: सबकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे। बस अब तक पहुंचा देगा।
0: बिल्कुल, आप पहुंच गई सब तक आपकी आवाज। तो आप ये बताइए कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा।
1: मैडम मैं तो खाते में बिरयानी है, इतनी चीजें खा लेती हूँ, बिरयानी, दाल पुलाव, खिचड़ा। खिचड़ा हमारे में बहुत बनता है।
0: अच्छा, तो चलिए और बताइए आपके घर में कौन कौन है।
1: मेरे घर में तो मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरा अब्बू है,
0: अरे वाह, तो सब लोग साथ
1: मेरी
0: में
1: जो
0: रहते
1: शादी
0: हैं।
1: जी मेरी जो शादी नहीं है, मेरी
0: हाँ,
1: दीदी की हो गई है।
0: अच्छा, आपको कौन सा गीत सुनना है।
1: हेलो सहेली में मैं वो गाना पसंद करती हूँ, बॉडी गार्ड का, तेरी
0: अच्छा, आपको बॉडी गार्ड का गाना सुनना।
1: कहानी है मुश्किल।
0: अच्छा ठीक है, तो आपके पसंद का हम ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप पहले तो अपना नाम और कौन से शहर से बोल रही हैं ये बताइए।
1: आरती जी, आप तो हमारे ही बेटी का नाम भी आरती ही है।
0: अच्छा।
1: और वो आपका प्रोग्राम बहुत ही सुनती रहती है।
0: तो अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है, 4 बजे तक सुनती रहती है और बोलती है मेरा नाम आया से गाना आया।
0: तो
1: बहुत मजा आता है उसको।
0: अच्छा।
1: इसके लिए मुझे बोलती है कॉल लगा।
0: अच्छा, तो कितनी बड़ी है आपकी बेटी?
1: मेरी बेटी मन बुद्धि की है ना, इसके लिए वो चल नहीं पाती।
0: अच्छा,
1: और थोड़ी मन बुद्धि की, अभी 30 साल की हुई, अभी अभी इसकी बर्थडे हुई गई।
0: अरे वाह, तो उसको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और
1: हाँ
0: बताइए अब आपको मतलब क्या करना अच्छा लगता है अपनी बेटी के साथ? अब जब समय बिताती हैं तो किस तरीके से दिनचर्या रहती है?
1: मैडम, उसको तो क्या है कि नख जो है ना वो रंगोना शायद भी उखड़ जाए ना तो नख पॉलिश रंगवा लेती। चूड़िया तो 40-50 चूड़िया पहनती है।
0: अच्छा, तो
1: और
0: अच्छा लगता है उसे, तैयार होना अच्छा लगता है?
1: हाँ, उसको तैयार होना, कपड़ा 2 टाइम नहाना, खाना सब
0: अरे वाह,
1: जो मांगे वो देना,
0: बहुत बहुत अच्छी
1: उसकी
0: बात
1: ही
0: है।
1: शरारत में हमारे पूरा दिन निकल जाता
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत
1: है।
0: अच्छी चीज है अपने अपने आप से प्यार करना, है ना? अपने आप से प्यार
1: हाँ
0: करना
1: हाँ
0: सबसे पहले जरूरी होता है, और बहुत अच्छी
1: हाँ
0: चीज है। वो
1: क्या
0: सजती है, संवरती है, अपने आप को अच्छा महसूस करती है, बहुत जरूरी है ये।
1: क्या है कि मेरा एक लड़का है बड़ा, और वो अभी शादी हुई, लड़की हुई, वो दूर रहता है। और अभी अभी एक मेरी लड़की की शादी हुई प्रियंका,
0: अच्छा,
1: आजीवा रोड पे,
0: बहुत बहुत
1: उससे
0: आपको
1: छोटी
0: बधाइयाँ।
1: थी।
0: और आपकी मतलब बेटी को ये तैयार होना अच्छा लगता है, उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, कुछ ऐसी बनाना?

0: या कुछ इस तरीके की चीजें करना?
1: नहीं, ये सब नहीं. उसको तो क्या है कि वो गाना, रेडिया, वो सब अच्छा. बहुत पहले से सुनती रहती है. वो सलमान खान बहुत अच्छा लगता हाँ, है, तो तेरे अच्छा. नाम का गीत सुनती है वो.
0: अरे वाह,
1: रोती है ना तो तेरे नाम का गीत सुना देते ना तो चुप हो जाए.
0: अच्छा, यानी उसे संगीत पसंद है. संगीत पता है आपको एक हाँ, बहुत अच्छी थेरेपी भी है.
1: हाँ, और आपका जो प्रोग्राम आता है ना वो सुनते हैं, उसमें से कुछ सीखना मिलता है. कोई खाना बनाना सीख लेते नए, कुछ बातें अच्छी सुनते तो किसी को बताते तो कोई खुश हो जाते.
0: बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत ये समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आप तक हम पहुंच पाए. आपको अच्छा लगा जो हमारा प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए. अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जो आरती को पसंद है?
1: आरती को पसंद.

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: तो आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं बोल रही हूँ कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बोल रही हूँ।
0: अरे
1: सकीना
0: वाह,
1: है मेरा नाम, सकीना जी।
0: अच्छा सकीना जी बोल रही हैं और बारामूला
1: जी
0: कश्मीर से बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए अब
1: मैं
0: अपने बारे में थोड़ा सा, आप क्या करती हैं और आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मैं घर में काम कर रही हूँ, पश्मीना का काम कर रही हूँ।
0: अरे वाह, पश्मीना का बहुत मशहूर है, कश्मीर का पश्मीना एकदम नाम जुड़ा हुआ है कश्मीर के साथ में ना, पश्मीना का।
1: जी मैम
0: जी तो आपके घर में कौन कौन है?
1: जी, मेरे घर में मेरी फैमिली है, मेरे 3 बेटे हैं, तो एक बेटा है, 3 बेटियां हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बच्चे छोटे हैं आपके कि बड़े?
1: नहीं, अभी छोटे हैं
0: छोटे हैं, तो यानी आपको पूरा टाइम उनके साथ में लगना पड़ता होगा, है ना
1: जी मैम।
0: आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपके बच्चे स्कूल गए होते हैं, मतलब आप जब अकेली होती हैं, आप कुछ कर नहीं रही होती हैं, तो आप क्या करती हैं अपने खाली समय में जब कोई काम सब निपट जाता है घर का?
1: जब खाली में रहती हूँ ना, बस ये रेडियो सुनती हूँ और अपना काम करती हूँ। और क्या, ये पश्मीना से ज्यादा हम रखते हैं ना, हम घर का काम खत्म करके बस यही
0: हाँ
1: करते हैं।

0: नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। अच्छा, आप इसे पश्मीना का क्या मतलब शॉल बनाती हैं कि कोई ऊनी
1: नहीं,
0: कपड़े?
1: शाल बनाते हैं।
0: शॉल बनाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये पश्मीना का शॉल तो, और वहाँ तो खूब अच्छे अच्छे तरीके के मिलते होंगे। अच्छा, पश्मीना के बहुत किस्में होती हैं कि एक ही मतलब
1: जी जी मैम,
0: होता है?
1: बहुत कस्में होते हैं पश्मीना की। जी,
0: अच्छा, तो आप सब तरह का बना लेती हैं?
1: दो
0: अच्छा
1: तीन
0: अच्छा
1: कस्म के बनाते हैं।
0: अच्छा तो ये आप मतलब अपने घर से ही उसको सेल करती हैं या फिर आप कहीं और देती हैं कि इसको?
1: नहीं, हम किसी और के जरिए ये काम करते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप ये अपने अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं जो, है ना,
1: जी
0: क्योंकि
1: मैम।
0: बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ काम आता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना, उसको आप अपने, जैसे कि हम अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा कर सकें, है ना, थोड़ी सी मदद
1: जी
0: कर
1: जी
0: सकें,
1: मैम।
0: तो बहुत अच्छी चीज़ है आप जो कर रही हैं। घर में आप रह के इस तरीके से अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो बताइए, आज आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: जी, मैं दिलवाले फिल्म है ना, उसका कोई भी गीत मैं सुनना चाहती हूँ।
0: दिल वाले फिल्म का कोई भी गीत सुनवा दें आपको, है ना?
1: जी जी मैम।
0: चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, तो सुनाते हैं
1: थैंक
0: आपको
1: यू
0: आपके
1: मैम।
0: पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते। आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही
1: हम रेखा मुखर्जी वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद खाटी से बोल रहे हैं।
0: हैं? तो बंगाल में सबसे ज्यादा देखने लायक क्या चीज है जो हम वहां पर आकर देख सकते हैं?
1: यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकते हैं जी।
0: जी बताइए।
1: यहाँ पर नवाब पैलेस है,
0: हाँ
1: रसगुल्ला भी है, यहाँ का मुर्शिदाबाद
0: हाँ
1: सिल्क भी विख्यात है,
0: अच्छा।
1: फेमस है। यहाँ का आम भी फेमस है, फेमस
0: अरे हाँ, मुर्शिदाबाद का आम और सिल्क।
1: है।
0: बहुत बहुत, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये बताइए कि आपको क्या करना चाहते हैं? आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करती हैं?
1: हाँ हाँ जी, हम हाउस वाइफ है। हम लोग जो रेडियो में जो सुबह सकाल होता है ना,
0: हाँ
1: उसी
0: हाँ
1: में हम लोग मैसेज भेजते हैं। जब
0: अच्छा
1: हम लोग को लाइव फोन में जब नहीं मिलते हैं
0: हाँ
1: तो हम लोग मैसेज भेजते हैं, स्टोरी पोएम लिख के भेजते हैं।

0: अरे वाह, आप लिखती भी हैं, आपको लिखने का शौक है?
1: हाँ, लिखती भी है। इस अच्छा, बार भी हम भेजे।
0: अच्छा अच्छा,
1: घर में मेरा पेड़ पौधे लगी हुई है।
0: हाँ,
1: और मेरा घर में बहुत सारी चीजें है, जो पेड़ ओढ़ है फूल का, उसमें रात को रहते हैं, उन लोग को हम दाना देते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है,
1: सबको दाना देते हैं हम।
0: अच्छा, तो आप इस चीज को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, आप लिखते रहिए, अच्छी अच्छी कहानियां लिखिए, पोयम लिखिए, कविताएं लिखिए, है ना? और बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का जू जू जू, जसोदा का नंदलाला, ब्रिज की उजाला है।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं आरती श्रीवास्तव। जरा ध्यान से सुनिए, ये फोन आपके संदेशों को हम तक पहुँचाने के लिए मीठी सी धुन सुना रहा है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले अपना नाम और फिर अपने शहर का।
1: आओ सुंदर शहर बनाए, डगर डगर पर वृक्ष लगाएं।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या शुरुआत करी है आपने, बहुत अच्छी बात कही है, एक मैसेज दिया आपने ना।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: इंदौर से बोल रही हैं आप, हसीना मंसूरी? हाँ
1: जी,
0: बहुत अच्छा लगा। बताइए कि आपको क्या पसंद।

0: मुझे लग रहा है ना आपको कई सारी चीजें पसंद होंगी करनी, है ना। सबसे पहले तो आपको बातें करनी पसंद होंगी, जहां तक मुझे लगता है।
1: जी बातें बहुत अच्छे करते हैं मैडम, और गाना भी सुनने का बहुत शौक है। रेडियो चलता रहता दिन भर, मतलब कम से कम 2002 से तो हम रेडियो रेगुलर सुन रहे, कभी मिस नहीं करते मैडम।
0: अच्छा।
1: और रेडियो मतलब खाना खाना छोड़ देते हैं मगर फोन जरूर लगाते हैं।
0: तो आपको कौन से प्रोग्राम पसंद है सबसे ज्यादा?
1: सबसे ज्यादा तो ये हेलो सहेली है, और पहले तो सच्ची सहेली आता तो उसमें लेटर भी शामिल किया करते थे मैडम, अगर वो लेटर जैसा अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग समीक्षा भी लिखते थे उसमें, रिसेप्शन भी लिखते थे पहले, तो आप लोग बहुत शामिल भी करते थे, अच्छी अच्छी बातें लिखते थे हम लोग, पता नहीं ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात रहेगी, सोने भी सुहागा हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सब तक पहुंच रही है। तो बताइए और क्या क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है करना ये बताइए।
1: सिलाई करती हूँ मैडम मैं अधिकतर तो ज्यादातर, और घर में काम भी, छुट्टी रहती है तो घर में काम करना भी अच्छा लगता है,
0: ये तो बहुत जरूरी चीज है,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये बताइए आप क्या क्या सिल लेती हैं?
1: ये गनी पैक का काम करते हैं मैडम, जूट का होता है।
0: अच्छा अच्छा, तो इसमें आप क्या मतलब क्या करना होता है, क्या बनाती हैं आप?
1: इसमें मशीन से रिपेयरिंग होता है, नहीं होता मशीन से नहीं चलता तो फिर हाथ से रिपेयरिंग करते हैं मैडम।
0: अच्छा, आप हाथ से भी कर लेती हैं?
1: हाँ इसमें रफो होता है मैडम।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत ही मतलब आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। बताइए आपको और क्या करना अच्छा लगता है?
1: रेडियो सुनना अच्छा लगता है मैडम, आप लोगों से बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: कुछ गाना गाना नहीं अच्छा लगता आपको? आवाज से लग रहा है मुझे
1: गाना गाना अच्छा लगता है ना मैडम, आके बताती हूँ।
0: देखा ना, मैंने आपकी आवाज से पहचान लिया।
1: जी जी, इनका नाम है फूल और अंगार, और मेरी फरमाइश भी यही है, और गाने के बोलने, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। ये सुना दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से बोल रही हैं?
1: हेलो सही, हम बड़ा गांव जिला गुना चंचल ढाकर बोल रहे हैं।
0: आप क्या करती हैं?
1: मैं
0: आपके
1: 10th क्लास।

0: पढ़ाती हूँ।
1: अच्छा, टेंथ में आप पढ़ाई कर रही हैं, तो कौन से विषय से आप पढ़ाई कर रही हैं? आपको कौन सा विषय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
0: हमको सबसे अच्छा विज्ञान लगता है, मतलब
1: विज्ञान। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। और बताइए, आपको क्या करना अच्छा लगता है? आपके आपके शौक क्या है? जो आप पढ़ाई के बाद आपका जो समय बचता है, तो उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
0: मुझको मतलब मेरा शौक ये है कि मैं आगे चलकर डॉक्टर बन जाऊँ।
1: डॉक्टर बनना है आपको? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो कि आप लोगों की सेवा करना चाहती हैं, डॉक्टरी करना चाहती हैं। बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: हम सुनना चाहते हैं सलमान खान का।
1: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ग्रामवर्ती पोस्ट कर जिला चंदौली से इमृति यादव बोल रही हूँ। आप बोल रही हैं आरती श्रीवास्तव।
0: पहचान लिया आपने। तो सबसे पहले बताइए आप आपको क्या करना पसंद है?
1: मुझे मैं घर में रहती हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम करती हूँ। मैम रेडियो के प्रोग्राम में सुनती हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, तो प्रोग्राम सुनती हैं, तो आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद है?
1: सभी प्रोग्राम अच्छा लगता है, और खासकर हमें सखी सहेली सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग बातें करते हैं और हंसते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको बहुत अच्छी बात है, ये आपको सखी सहेली अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आप, जैसे कि आप गाने सुनती हैं, तो आपको कैसे क्लासिकल गाने ज्यादा पसंद हैं या फिर आज के समय
1: जी
0: के?
1: नहीं, हर तरह के गीत पसंद है, नए हो पुराने हो, भक्ति हो या हिंदी हो।

0: मुझे हर तरह की पसंद है और रेडियो सुनना मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। रेडियो से जो हमें कहीं से खुशी नहीं मिलती वो रेडियो से मिलती है।
1: ये तो सही बात है। अगर संगीत जो होता है ना वो एक दूसरे से बांध देता है ना, और साथ ही हमारे सारी परेशानियों को थोड़ी समय के लिए सही लेकिन दूर कर देता है। और आप जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे संगीत पे बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम है जो रागों के ऊपर होते हैं, क्लासिकल संगीत के प्रोग्राम है, वो सब भी आप सुनती हैं?
0: जी, मैं हर तरह के गीत पसंद है और गाते भी हैं थोड़ा सा रेडियो के साथ में।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। गाना जब हम गाते हैं ना तो सोचिए अपने अंदर के एकदम ऐसा लगता है ना कि हम अपने अंदर का भी जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे अंदर तनाव था, जो परेशानियां थी, वो खत्म हो रही हैं, धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, रिलैक्स हो जाते हैं ना एकदम, ऐसा लगता है ना।
0: जी, अच्छा लगता है।
1: तो आपको जो गाना सुनना है ना वो आप गा के सुना दीजिए बता दीजिए हमें।
0: मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है।
1: बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं मीनू अग्रवाल बोल रही हूँ, मथुरा से। मैं
0: अच्छा, तो बताइए मीनू जी, आप क्या करते हैं? आपको क्या करना पसंद है?
1: घर में भी रहती हूँ और मैं घर पे ट्यूशन लेती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बाकी का मेरा मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो जैसे कि पेंटिंग है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ
1: और सबसे ज्यादा कुकिंग में है मुझे इंटरेस्ट। तो
0: अरे वाह, बहुत अच्छी
1: मुझे
0: बात है।
1: हाँ, तरह तरह का खाना बनाना अच्छा लगता है
0: कौन कौन से तरीके के खाना बना लेती हैं आप?
1: जी। मैं वैसे तो अपना यही इंडियन फूड ही ज्यादा बनाती हूँ, और बाकी का हाँ, बाकी का ये है कि और भी चीजें मेरे पे आती हैं, जैसे साउथ इंडियन डोसा, इडली, सांभर वगैरह, ये सब
0: अरे
1: चीजें।
0: वाह, क्या बात कर रहे हैं आप, इतनी तरीके की चीजें आप बना लेती हैं घर में।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तब तो आपके फैमिली, आपके जो परिवार हैं, सब लोग आपसे बहुत खुश रहते होंगे, है ना? आप बना बना के
1: हाँ
0: अच्छी अच्छी
1: जी,
0: चीजें खिलाती
1: कहते
0: होंगी।
1: हैं ना, हाँ जी कहते हैं ना कि इंसान की जो पहली पसंद होती है ना, घर में जो मेंबर्स होते हैं उनकी पहली पसंद होती है खाना। अगर उनको खाना हमने अच्छा दे दिया ना बना के, तो बस। मैंने अभी बताया था पेंटिंग कुकिंग वगैरह
0: हाँ
1: है, तो मैं
0: हाँ
1: पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ
0: अरे वाह,
1: और सेल भी होती है, ऐसी बात नहीं है मेरी पेंटिंग्स वगैरह।
0: बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ड्राइंग कर लेती हैं, आप पेंटिंग बनाती हैं, आप खाने तरह तरीके की बना लेती हैं, बहुत
1: हाँ
0: अच्छी
1: जी।
0: बात है ये तो। और आप ऐसी ही बढ़िया बढ़िया चीजें बनाइए, और किसी दिन हमें भी आप बुलाइए, ताकि हम भी आए और आपने जो बताई चीजें उनका हम भी कुछ लुत्फ उठा सके।
1: अरे
0: क्योंकि बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छी चीज है, आपको तरह तरह की चीजें करनी आती हैं। तो बताइए मीनू जी, आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: जी, मैं दो कलिया मूवी का गाना सुनना पसंद करूंगी, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गीत है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी, चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश नहीं हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी कामयाब जरूर होते हैं और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीनों तक कॉल न लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले जी का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी है नम्रता टिकोले और विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जिंद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिससे दिल्ली से कटरा का सफर 6 घंटे का रह जाएगा। कोडरमा के सांसद और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिंद से रवाना की गई यह ट्रेन हरित और आधुनिक रेल भविष्य की नई शुरुआत है। यह तकनीकी प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त करेगी। रांची के नामकुम अंचल में जमीन घोटाले और राजस्व रिकॉर्ड गायब होने के मामले में एसीबी जांच का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट सचिव की अनुमति के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने एसीबी को 4 सप्ताह में प्रारंभिक जांच दर्ज कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के मधुपुर अखड़ा में हुई रविंद्र मुंडा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए गठित टीम ने मुख्य आरोपी विकास मुंडा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आपसी विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। सरायकेला खरसावां के कपाली में पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने पीछा कर एक 4-पहिया वाहन को जब्त किया, जिससे 3 गायें बरामद हुई हैं। पुलिस के अनुसार चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मौसम विभाग रांची ने 21 जुलाई तक भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। आज और कल रांची, गुमला, लातेहार और रामगढ़ समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला, यदि विजय 6 मासी परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासी परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहां से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुंचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लोट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामाटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई, वो फिर हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाक्य को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता।

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे, 4-5 तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विज्जू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विज्जू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विज्जू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विज्जू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विज्जू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विज्जू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विज्जू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया, मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहां जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। बिज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन बिज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने बिज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। बिज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और बिज्जू से कहते, कूद जा, मैं खड़ा हूं तुझे संभाल लूंगा। और बिज्जू कूद जाता। बिज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुंचता तो वो और पीछे चले जाते। और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी? भैया के भावों से बिज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हो तो चिंता मत कर, मैं हूं ना।

बड़े भैया की शादी की बात चल निकली, उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे स्मार्ट, दुल्हन अच्छी मिली, मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं लेकिन शांत स्वभाव की दिखी। हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहां तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विजू को आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानी पूरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाच नाच के काम किया विजू ने शादी में। विजू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विजू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी, मेरी भाभी।

विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और विज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया। शादी के बाद विज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी विज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी माँ और भाभी की पट्टी नहीं थी, वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। विज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। विज्जू के लिए ये सब कुछ समस्या परे था। आदतन कोई सवाल तो विज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। विज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे। टिमटिमाती चमक लिए विज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूं और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
0: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
0: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
0: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
0: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
2: जी,
0: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
0: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से

0: छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी, जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
1: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है, जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना, जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहाँ से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
1: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है,
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे, जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या, 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि।

0: उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था, और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
1: टैथिस महासागर।
0: वाह,
2: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
0: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
2: अलग होकर खिसकने लगे?
0: अरे, एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
2: सर, फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
0: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर, हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
3: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
3: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
3: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
3: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र

0: रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
1: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजन कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा,
2: दादी काफी प्रभावित हुई।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
4: बस काफी है दादी,
2: उसने रूखे स्वर में कहा।
4: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
2: दादी ने पूछा।
4: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम

0: तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
0: बोलो
1: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
0: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
0: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
0: अच्छा।
1: राजम उनके साथ था, अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
0: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
0: 2 शेर राजम पर झपटे थे,
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उलझनों कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
1: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
0: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
0: तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
2: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: तो अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कौशल विकास मिशन सोसाइटीज में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कथित फर्जी बैंक गारंटी मामले की न्यायिक जांच और दोषी अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए सरकार को घेरा है। रांची में पेंशन समावेशन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज एनपीएस संचय आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और पीएफआरडीए के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में नाबार्ड और विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन योजना से जोड़ने पर बल दिया। गढ़वा जिले में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शत प्रतिशत गणना प्रपत्रों का विवरण पूरा हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपतिनाथ मिश्र ने बताया कि 8,62,000 से अधिक प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। प्रशासन का लक्ष्य 5 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का अंतिम प्रकाशन करना है। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भवानिया ने राजकीय श्रावणी मेला 2026 के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कांवर पथ पर यात्री शेड, जल निकासी और ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने अधिकारियों को सभी कार्य समय पर पूरा करने को कहा है। पाकुड़ पुलिस ने रथ यात्रा के दौरान मोबाइल चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सोहन सिंह और रेखा देवी पश्चिम बंगाल के बर्दवान के रहने वाले हैं। इनके पास से चोरी के 6 मोबाइल और नकदी बरामद कर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र के फुलसुरी गांव में आज सुबह करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। 36 वर्षीय छोटू महतो जब अपने खेत में मिर्च तोड़ने गए तब वहां पहले से गिरे बिजली के तार की चपेट में आ गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: तो अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और चिन्मय श्री प्रदा को फिल्म ट्विस्टेड में, और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुमार शानू की आवाज में गाए इस गीत को, मगर उससे पहले सुनते हैं इस संदेश को।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

कार्यक्रम खेती बारी सुने वालन सभी भाई बहन के मुकेश सदन से जोहार प्रणाम और राम राम। साथ ही साथ सभी भाई बहन के अपनी खास कार्यक्रम खेती बारी में स्वागत है, जोहार है। और देखा कि हमें जैसा कि हमें जाना ही है कि हमें जो देश है ये कृषि प्रधान देश है और देश के अधिकतर आबादी देखा खेती बारी और पशुपालन में लगल रहे है। एकरे से उनका रोजगार मिला है, घर परिवार चला है। और देखा एकरे बढ़ावा खातिर, खेती बारी के बढ़ावा खातिर और पशुपालन के बढ़ावा खातिर बहुत सारा सरकारी योजना है जेकर लाभ लेकर के खेती बारी के जो किसान है या पशुपालक हम इनके भाई बहन है ये योजना के लाभ लेकर के अपन काम में और तेजी लावे है। तो हमें आज बात देखा करबे कि कौन कौन तरह से के खेती बारी में योजना है जेकर से किसान भाई बहन जो है लाभान्वित होवे है और कोई योजना के लेवे है और बहुत सा किसान भाई बहन योजना के लाभ ले भी रहे है। तो हम इन बात करबे कि कैसे है खेती बाड़ी के का योजना है। तो खेती बाड़ी में देखा कि बहुत सारा योजना है जेकर में हमें बात करबे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जैसा कि हमें जाने कि प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि योजना जेकर में है कि 6,000 रुपया हर एक साल किसान के मिला है जे कि 2,000 के 3 गो किस्त के रूप में मिला है, यानी साल भर में 6,000 रुपया। और एकर लाभ लेकर के देखा कि किसान भाई बहन जो है अपन होले बीज होले या और किसी तरह के चीज होले वो अपन लेवे है और खेती बारी एकर में करे है। तो एकर से देखल ये भी गले है कि एक तरह के सहयोग मिल जा है किसान भाई बहन के अपन खेती बारी करे खातिर और लोग बढ़ चढ़ के एकर में और खेती बारी करे है। और देखल ये भी गले है कि दिनों दिन उनकर आय जो है वो बढ़ते भी जा रहे। इसी तरह का देखा एक और योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखा बहुत बड़ा बहुत बढ़िया योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि अगर मैं देखा कि का हुआ है कि अगर किसी भी तरह के हमें अगर के लगा है कि फसल किसी पानी कम हो गए या वर्षा ज्यादा हो गए या किसी तरह का कोई भी प्राकृतिक अगर आपदा आ जाए और हम इनके फसल खराब होवे के में डर बनल रहा है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा जब हम इन योजना ले लीजिए तो हम इन देखा एक एकर से निश्चित हो जाइए कि हमें अपन बढ़िया से खेती बाड़ी करेंगे और किसी भी तरह के अगर कोई प्राकृतिक आपदा अगर आवे है और हम इनके फसल खराब हुए है तो हम इनके उस फसल के बदला आर्थिक जो सुरक्षा हम इनके मिला है आर्थिक हम इनके सहयोग मिल जाए। इसी तरह का देखा एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। एक में देखा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देखा जो किसान है वो एक कम दर पे ऋण वगैरह मिल जाए है और अपन वो बहुत सारा जो चीज है कोई किसान मान लिया ट्रैक्टर ले ले ले और पैसा के और कुछ और पैसा और मिला करके ट्रैक्टर ले सहयोग राशि करने मिल जाए तो अपन जो काम है खेती बाड़ी से जुड़ल जो काम है वो एक माध्यम से करा है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। किसान क्रेडिट कार्ड में देखा हुआ है कि कम दर पे ऋण एक में मिला है और एक बार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर कोई भी किसान ऋण ले लेवे है फिर ओकरा चुकता कर देवे है तो देखा ओकर से बढ़ के ऋण लेवे के वो हकदार बन जाए है और अगला बार ओकर से बढ़ के मिला है। इसी तरह देखा अगर 8-10 साल हम किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर हम ऋण ले लिया और ओकरा चुका दिए तो एक देखा मोटा रकम 10-12 लाख रुपया तक के रकम भी आगे अपन ओकर में भविष्य में वो ले सके एकर में है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस सिंचाई योजना के देखा कि हम इन देखे ये कि जे आधुनिक सिंचाई के जे साधन है टपक सिंचाई बूंद विधि है या ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकल जे सिंचाई है योजना तो एकर माध्यम से हम इन योजना के लाभ लेंगे। और जैसा कि हम जाने कि खेती बारी में देखा सबसे बड़ा चीज हुआ है माटी और पानी। तो अगर माटी हम इनके बढ़िया रहे और पानी हम इनके सिंचाई योजना के माध्यम से पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से मिल जाए तो हम इनके खेत देखा हरा भरा रहा है। और जैसा कि हम जाने कि किसान के भी जे सबसे बड़ा प्यारा रंग बोला कि हरा रंग ही हुआ है ओकर में तो ई योजना के माध्यम से देखा कम पानी में और कम समय में बड़ा खेत में भी हम इन आराम से सिंचाई कर सकेंगे जेकर हम इनके लागत भी कम हुआ है और हम इनके जो है मेहनत भी कर में कम हुआ है। एक और तरह की योजना है कृषि यंत्र उपकरण योजना। ई योजना के माध्यम से देखा ट्रैक्टर हो या रोटावेटर हो या और भी बहुत तरह के कृषि यंत्र जो हुआ है ओकर में देखा जे कि हम इनके देखे काम के आसान बना देवे है घंटों के काम देखा मिनटों में हो जाए है कृषि यंत्र से। एकर में देखा सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिला है
और ई योजना में देखा जब सब्सिडी मिल जाए तो किसान एक हिम्मत भी करा है कि हमें किस तरह के कृषि यंत्र लिया और अपन काम के चलाइए। साथ ही साथ देखा मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से भी किसान बहुत ज्यादा एकर में फायदा उठा ले, लाभान्वित एकर में हो रहे। और देखा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के सबसे बड़ा बात एकर में ये है कि हर एक माटी के जांच कराए के चाहिए कोई भी फसल बोआ के पहले। तो हमीन के जब माटी के जब जानकारी मिल जाए कि का माटी के हम इनके सेहत है, अगर किसी तरह के कोई कमी है माटी में कि मान लिया पोटासियम के कमी है या नाइट्रोजन के या बोरन के या एक और किसी भी तरह के कमी एकर में हुआ है तो देखा हम इनके वो जानकारी एकर में मिल जाए और वो कमी के दूर करके हम इन अपन जो खेत के है बढ़िया ढंग से आगे हम इन चला सकिए और एक अच्छा हम इन बीज रोप करके अच्छा आमदनी भी मिल सका है। और एक बात है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के कि एक हम ये भी है कि खेत के चारों कुनार बीच से कम भी आकार के 6 से 8 इंची या हमें माटी लई है जेकर हमें एक तरह का देवे ही है जांच के लिए। और जांच कराए के समय हमें अपन खेत का नाम होले और खाता प्लॉट होले और ई खेत में पहले हम इनका लगेला लिए और माटी के जांच कराए के बाद हम इनका लगेबे ई सब चीज के भी कर में जानकारी दिए तो हम इनके एक देखा सही चीज के मिल जाए। और फिर जे विशेषज्ञ हम इनके जानकारी देवे है कि कौन सी चीज की कमी है बोरोन के पोटासियम के या कैल्शियम के तो हम इन ऊ चीज दूर करके माटी के जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया बना लेंगे। और जब माटी के स्वास्थ्य जब बढ़िया बन जाए तो ओकर में हम इन उन्नत किस्म के बीज के प्रयोग ओकर में हम इन करेंगे जेकर से हम इन देखा किसान हो या हम इन बढ़िया से ओकर में लाभ हम इन कमा सकेंगे। और देखा कि सरकार देखा अब बोला कि 1 जुलाई से हम इनके झारखंड में भी देखा लागू हो गए है VVG राम जी योजना। एक योजना भी के माध्यम से जो है किसान के बहुत फायदा है। एकर में देखा जल संरक्षण के योजना है, खेत से जुड़ा योजना है, किसान पौधा रोपण के बहुत सारी योजना एकर में है जेकर से किसान जो है ये योजना के लाभ लेकर के वो योजना के बारे में जान करके लाभ ले सका है। और ये योजना के जानकारी अपन गांव के या पंचायत के ग्राम सभा में जाकर के योजना के जानकारी भी ले सका है। इसी तरह देखा कि पशुपालन के बढ़ावा देवे के खातिर और आय किसान के बढ़ावे के खातिर बहुत सारी योजना पशुपालन के भी है जैसा कि हमें बता रही है कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। ई योजना में देखा गाय बकरी सुअर मुर्गी पालन पे देखा कि 50% के सब्सिडी 50 से 100% तक के सब्सिडी भी एकर में योजना में मिले हैं। और देखा कि गाय होले या बकरी होले और सुअर होले या मुर्गी पालन होले एकर में देखा सेट के निर्माण भी की करल जा है, बस जानकारी किसान भाई बहन के हुए के चाहिए। देखा पहले के हले KCC में खाली खेती बारे से जुड़ल रहा है लेकिन अब के KCC के जो योजना है किसान क्रेडिट कार्ड के योजना है ये पशुपालक के भी योजना है और पशुपालक जो है वो योजना के ही लाभ ले सका है। और अपन पशुपालन में कम दर पे जो ऋण मिला है अपन पशुपालन के जो व्यवसाय है ओकरा बढ़ा भी सका है। पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना, ई योजना के माध्यम से देखा पशु के जो है रोग लगे के पहले जो टीकाकरण हुआ है ओकर लाभ में मिला है पशुपालक भाई के। इसी तरह के बात अगर मैं अगर बीमारे हो गए पशु तो ओकर इलाज के भी एक में बात हुआ है जो कि पूरी तरह देखा निःशुल्क हुआ है तो पशुपालक भाई योजना के लाभ लेकर के

लाभ कमा सकै है अपन, और अपन जे रोगी जे पशु है ओकरा निरोग भी कर सकै है और रोग मुक्त कर सकै है। पशुपालन अवधारणा विकास निधि योजना जे है, एकर में देखा डेयरी प्लांट होले या मीट प्रोसेसिंग होले या पशु चारा प्लांट के एकर में लगा के एकर में ऋण भी एकर में मिले है कम दर पे, और ये योजना के लाभ लेकर के बड़ा पैमाना पे ये सब प्लांट लगा करके ये पशुपालक भाई जे है ये अपन काम कर सके हैं। अब देखा कार्यक्रम में तो हम इन बनल ही है, ढेर सारा आगे जानकारी भी ले लेंगे, और अभी समय हो गए है जरूरी संदेश के और एगो प्यारा सा गीत के, सो सुने ही जरूरी संदेश के साथ एगो प्यारा सा गीत भी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: देखा हमें जरूरी संदेश भी सुन लिए और प्यारा सा गीत भी सुन लिए, और अब बढ़िए आगे जानकारी की तरफ। और आज हमें जानकारी ले लेंगे लीज के जमीन पर टमाटर और मकई की उन्नत खेती के बारे में। जानकारी दे रही थी एक महिला किसान है मुनीता देवी, और इनकर से बातचीत कर ले यानी हम यानी मुकेश कुमार, तो सुनिए ये जानकारी। श्रोताओं, आज हमारे सामने है मुनीता देवी जो कि एक सफल महिला किसान है और खेती बाड़ी बहुत अच्छा ढंग से कर रही है। इनका अपना खेत भी है और ये लीज पे जमीन लेकर भी खेती बाड़ी करती है। अभी हम इनके खेत में खड़े हुए हैं और इनका खेत पूरा हरा भरा है, मक्का लगा हुआ है।

0: है, टमाटर लगा हुआ है और ये लीज का जमीन लेके खेती बाड़ी करती है। तो मुनीता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जोहार है।
1: जोहार।
0: मुनीता जी, अभी आपके खेत में क्या लगा हुआ है?
1: गोभी है, टमाटर है, मक्का है, खीरा है।
0: अच्छा, कितना दिन से खेती बाड़ी कर रहे हैं?
1: 6 साल से
0: खेती कर रहे हैं। अपना खेत भी है?
1: हाँ।
0: और ये जो आप खेती बाड़ी इसमें कर रहे हैं, ये लीज का जमीन है?
1: लीज का जमीन है।
0: लीज का जमीन है। कितना कट्ठा है ये? या एकड़ है?
1: डेढ़ एकड़।
0: डेढ़ एकड़ में खेती बाड़ी कर रहे हैं और टमाटर लगाए हुए हैं और मक्का लगाए हुए हैं। एक बात आता है कि लीज का जमीन लेकर के जब आप खेती बाड़ी करते हैं, पैसा भी ज्यादा लगता है। आपके खेत में हम देख रहे हैं जितना जो काम कर रही है वो सब महिला है, और सबसे बड़ा चीज है कि आप महिला भी है और महिला लोग को रोजगार भी दे रही है। हाँ। जो कि सबसे बड़ा बात है, इनका घर परिवार भी आपके माध्यम से ही देखा जाए चल रहा है, जो कि सबसे बड़ा आज के समय में पुण्य है। अगर एक घर के एक सदस्य को आप रोजगार देती है तो उससे देखिए 5 लोग लाभान्वित होते हैं, उनका बच्चा हुआ, खाना पीना उनको मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आप जो लीज का जमीन लिए, तो पहली बार लिए हैं कि पहले भी लेते थे?
1: नहीं, पहले 6 साल से भी ले रहे हैं।
0: 6 साल से ले रहे हैं। आसपास में भी जमीन लेते होंगे लीज का जमीन। तो लीज का जमीन जब आप लेते हैं तो क्या सोचते हैं, कैसा जमीन होना चाहिए, क्या सुविधा होना चाहिए उसमें?
1: पानी का सुविधा होना चाहिए,
0: ठीक है,
1: और अच्छा चिकनाई मिट्टी होना चाहिए।
0: चिकनाई मिट्टी। इसका मिट्टी कैसा है?
1: ये तो थोड़ा सा हम पीछे हो गए, इसलिए थोड़ा सा बलसर में आ गया है,
0: बलसर मिट्टी,
1: इसलिए पीछे हो गए हैं। और बाकी जो काला मिट्टी रहे, चिकनी मिट्टी रहे तो अच्छा रहे।
0: अच्छा, मिट्टी देखते हैं, पानी की सुविधा देखते हैं, घेरा उरा भी देखे, पूरा प्लास्टिक का जाली टाइप आप किए हैं?
1: पूरा
0: खुद से किए हैं?
1: खुद से किए हैं।
0: हाँ, जी हाँ,
1: अपने से जाली कांटा तारा।
0: अच्छा, क्योंकि ज्यादा पूंजी इसमें लगता है, महिला मंडल से भी जुड़ी हैं?
1: महिला मंडल से हम जुड़े हैं।
0: अच्छा, खेती बाड़ी जो आप कर रहे हैं तो इसमें खेत का जुताई कितना बार किया था?
1: खेत का जुताई 3 बार।
0: 3 बार किए?
1: 3 बार।
0: यानी पूरा मिट्टी को भुरभुरा बना दिए। खेत का जुताई करने समय क्या क्या डाले थे इसमें?
1: गोबर डाले थे।
0: गोबर और
1: सल्फेट।
0: गोबर और सल्फेट डाले थे। अच्छा, गोबर खाद जो आप डालते हैं क्या फायदा होता है?
1: वही ग्रोथ करता है।
0: ग्रोथ करता है,
1: जमीन को अच्छा बनाता है।
0: अच्छा बनाता है। और गोबर खाद डालने से एक बात होता है कि अगर हमको लंबा समय तक खेती बाड़ी करना है तो गोबर खाद डालना ही पड़ेगा।
1: डालना ही पड़ेगा,
0: क्योंकि उर्वरक का ज्यादा प्रयोग कीजिएगा तो वो मिट्टी को बर्बाद कर देता है। तो गोबर खाद जो ये डाले थे, कितना दिन का पुराना गोबर था इसमें?
1: 1 साल का।
0: 1 साल का पुराना गोबर था। तो मान लीजिए अगर 1 एकड़ का किसी के पास खेत है, कितना गोबर खाद डालना चाहिए कि मिट्टी अभी मेरा बढ़िया हो जाए?
1: दो ट्रैक्टर।
0: 2 या 3। और जुताई 3 बार किए थे इसका?
1: हाँ।
0: यानी पूरा मिट्टी को भुरभुरा बना दिए गोबर खाद डाल करके।
1: हाँ, एक बार बड़ा खड़ा हर से, फिर दोबारा रोटर, तीसरा फिर पात कराए।
0: जी हाँ।
1: उसके बाद रोपाई की।
0: जो यहाँ महिला जो काम कर रही है अभी, ये क्या काम कर रही है?
1: घास निकाल रही है।
0: घास निकालने से क्या फायदा होता है
1: इसमें? टमाटर में एक कोई दाग भी नहीं आएगा,
0: दाग नहीं आएगा,
1: नहीं लगेगा, फ्रेश रहेगा।
0: जी हाँ। और जो पौष्टिक तत्व उनको मिलना चाहिए वो उनको मिलेगा। और गोबर खाद तो आप डालती ही है, और जैसा कि हम जानते हैं कि गोबर खाद डालने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, नमी धारण करने की क्षमता बनी रहती है, यानी कम पानी में भी उसका सिंचाई हो जाता है, बीमारी कम इसमें आता है, और जो भी चीज उपजता है वो स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, जो कि कोरोना काल में हम लोग सीखा ही कि कोई भी चीज अगर हम लोग खाते हैं, पौष्टिक चीज खाते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बना हुआ रहता है, जिससे हम कोई भी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो किसान का सबसे प्यारा रंग भी है हरा रंग, क्योंकि हरा अगर खेत में रहता है तो उनका मन भी गदगद रहता है। इसमें जो टमाटर का जो डाले हैं, जो बीज है, एक ही कंपनी का है या अलग अलग कंपनी का?
1: नहीं, अलग अलग कंपनी का है।
0: अलग अलग। मक्का भी वही है?
1: मक्का भी।
0: जी हाँ, मिली जुली खेती आप कर रहे हैं, तो अलग अलग कंपनी का जो डाले ऐसा क्यों?
1: ऐसा क्यों कि एक नहीं होगा तो एक हो जाएगा।
0: जी हाँ, यानी भविष्य को देख के भी,
1: भविष्य को देख के
0: कि अगर एक में कुछ अगर बात होता है तो दूसरा वो मेकअप कर देगा।
1: हो गया, एक हो गया, कुंदन था तो गणजरा निकल गया है, और केसर है तो वो ठीक है।
0: अच्छा, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है एक में, तो उसमें कुछ हुआ तो आप उसका दवा हुआ दिए?
1: हाँ, दवा डाल रहे हैं।
0: तो दवा जो देते हैं, विशेषज्ञ से सलाह लेकर डालते हैं या दुकान में जाके ही बोलते हैं?
1: दुकान से ही डालते हैं, विशेषज्ञ तो है अपने रिश्तेदारी
0: पाते, दुकान में ही बोलते हैं।
1: दुकान में ही बोलते हैं,
0: ये आया मतलब बीमारी आ गया है, ऐसा दिख रहा है पत्ता।
1: हाँ।
0: तो उनको अपना सही दवा देते हैं।
1: हाँ।
0: वो दवा दिए तो सुधरा है?
1: हाँ।
0: सुधर गया है।
1: हाँ।
0: खेती बाड़ी करना कैसा लगता है आपको?
1: अच्छा लगता है, अपना खेती बाड़ी करते हैं, अपना सारा परिवार घर में ही रहते हैं।
0: जी हाँ,
1: अपना रहते हैं आराम से।
0: खेती बाड़ी में कौन कौन साथ देता है आपका?
1: बाल बच्चा, हस्बैंड।
0: अच्छा, ये खेती बाड़ी में जो अब टमाटर में ये डंटा जो लगाते हैं, ये कहाँ से आता है?
1: खरीद के लाना पड़ता है।
0: बोझा के हिसाब से रहता है डंटा?
1: हाँ।
0: एक बोझा कितना रहता है?
1: एक बोझा 25।
0: 25 रुपया। खेती बाड़ी आप कर रहे हैं, घर परिवार को चला रहे हैं और आशा करते हैं कि बढ़िया सा खेती बाड़ी तो कर ही रहे हैं और इतने लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। अब जो ये माल निकलेगा ये कहाँ बेचेगा?
1: बाहर जाएगा, बेंगलोर कलकत्ता।
0: बेंगलोर कलकत्ता जाता है। हजारीबाग का मार्केट में रेट कम मिलता है?
1: हजारीबाग का मार्केट रेट कम है। अभी यहाँ से हमको 40 रुपए कल 45 दिए और मार्केट लेते गए परसों तो हमको 30 रुपए देना पड़ा, तो कहा देंगे हजारीबाग
0: में, मतलब बाहर में जाता है।
1: हाँ।
0: तो वहाँ का व्यापारी से कैसे आप लोग बातचीत करते हैं, कैसे मतलब कंसल्ट कैसे होता है आप लोग का?
1: वो मोबाइल से ही होता है।
0: मोबाइल से पहले आए हैं वो व्यापारी?
1: हाँ।
0: तो अपना गाड़ी वो बैंगलोर से आता है वो गाड़ी?
1: हाँ, बस बात
0: लोड करके वो चला जाता है। कांटा उटा जो उसका होता है तोलते हैं, अपने लेके आता है कि अपना काटा भी
1: रखते हैं? नहीं, अपने लेके आते हैं, अपना हमको सिर्फ तोड़ के रखना है, वो अपना डालेंगे, अपने लेके चल जाएंगे।
0: बस आप तोड़ के रख देते हैं?
1: बस तोड़ के रख देते हैं।
0: अच्छा, उनका काटा सही है या नहीं कभी जांच करते हैं?
1: कभी अपना काटा भी लाते हैं, कभी उनका काटा भी, कभी अगर कोई भूल गए लाने में तो अपना काटा ले।
0: जैसे मान लीजिए वो अपना काटा लेकर के आए, एक बार तो आप जांच पीछ में कभी भी कर लेते हैं तोलने के दौरान, कभी भी कर लेते होंगे कि उनका बढ़िया काटा है?
1: नहीं, हम लोग तो 6 साल से अंदाजा कर लिए हैं कि कैरेट में ही 25 केजी रहता है टमाटर।
0: जी हाँ, एक कैरेट में 25 केजी टमाटर।
1: 25 केजी
0: यानी आप
1: फूल भर दीजिएगा तो 25 केजी हो जाएगा। कैरेट कोई भी कैरेट रहे, उनका रहे या अपना रहे,
0: मतलब कैरेट देखा जाए तो कैरेट भी एक तरह का नापतौली है। एक कैरेट 24 या 25 केजी का आ जाता है।
1: अगर टमाटर में तोड़ देते हैं कि 4 कैरेट हो गया तो यहाँ 3 कैरेट फ्रेश मिल जाता है।
0: जी हाँ। अच्छा, सिंचाई का क्या साधन है, पानी पटवन कैसे करते हैं?
1: बोरिंग से।
0: बोरिंग किए हुए हैं?
1: हाँ।
0: जो जमीन का मालिक है वही करके दिया या आप किए?
1: नहीं, हम अपना किए।
0: अच्छा, ये जो लीज आप लेते हैं तो कितना समय के लिए लेते हैं?
1: एक समय के, एक फसल के।
0: एक फसल के लिए, क्योंकि बहुत से हमारे भाई लोग भी हैं और वो लोग देखते हैं कि लीज वो एक बार अगर लिए तो 5 साल के लिए ले लेते हैं।
1: नहीं,
0: एक लंबा समय। आप एक फसल के लिए लेते हैं? अच्छा, इसका रेंट क्या होता है, कट्ठा पे रेंट होता है, एकड़ पे रेंट होता है?
1: कट्ठा पे।
0: एक कट्ठा कितना रेंट देते होंगे?
1: 350
0: तो एडवांस भी उनको कुछ देते देते होंगे या माल बेच के?
1: माल बेच के
0: ही। परिचय के हैं आपके? क्योंकि बहुत से जगह हम लोग देखा ना कि थोड़ा सा एडवांस उनको मिल जाता है फिर माल बेच के बोलो।
1: नहीं, तो दूसरे गांव के जो आते हैं वो सब एडवांस देते हैं।
0: यही गांव के आप भी है? यही गांव के जिनका जमीन
1: भी है, यही मेरे ही गांव का जमीन भी है।
0: जी हाँ,
1: तो अपना हेलमेल है तो नहीं देते हैं, बाद में ही देते हैं।
0: अच्छा, ये जो महिला लोग जो काम कर रही है इनको एक दिन का क्या मिलता है?
1: 170।
0: तो जब जो भी समय इनको लगा सुबह का समय, तो मुनीता जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और खेती बाड़ी आप इसी ढंग से करते रहिए और लोगों को रोजगार देते रहिए, तो कार्यक्रम में आप बने इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा, अभी हम इन जानकारी सुन लिए लीज के जमीन पर टमाटर और मकई की उन्नत खेती के बारे में, और जानकारी देवल थी मुनीता देवी की जो कि महिला किसान थी और इनखंड से बातचीत करा लिए, यानी कि हम यानी मुकेश कुमार। अब देखा, एक और है कि मशरूम के खेती, जैसा कि हमें जाने ये कि जब हम इन खेती के बारे में सुने ये तो ज़्यादा पानी के हमें हुआ है, कम लगा है, ये हम इनके दिमाग में आवा है, लेकिन मशरूम के खेती कम लागत कम पानी में ये खेती हो जा है। और देखा कि एकर में शहर हो या गांव हो, एकर में खेती एकर में हुआ है। अगर एक रूम भी अगर मान ला हम इनके 10x10 के भी एकर में रूम है तो मशरूम की खेती हम इन एकर में आसानी से कम एकर में करेंगे हम इन। और एकर में देखा कि बहुत कम पानी एकर में हम इन लगा है और देखा 1 से 1.5 महीना में हम इनके एक अच्छा हम इनके मशरूम हो जाए है। और बाजार में देखा दिनों दिन एकर मांग भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे, जेकर कारण देखा कि शादी विवाह हो या होटल हो और एकर जी हमें लागत बोलबे एकर में बहुत कम हुआ है और मुनाफा एकर में बढ़िया हुआ है। तो मशरूम की खेती एक स्वरोजगार के लिए बहुत बढ़िया अच्छा उपाय है। तो यही जानकारी के साथ अब हमारा कार्यक्रम खेती बारी से अनुमति दा। जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें झारखंड के पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा और अन्य गणमान्य लोगों ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का रेलवे स्टेशन के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें मानसून की स्थिति, सिंचाई परियोजनाओं और किसान समृद्धि योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। धनबाद के निरसा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 10वीं के छात्र के साथ रैगिंग और बेरहमी से मारपीट के बाद आज परिजनों ने स्कूल गेट पर जोरदार हंगामा किया। सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोग धरने पर बैठ गए। बीडीओ इंद्रलाल ओहदार ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। खूंटी में आपराधिक और नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि पिछले 2 महीनों में हत्या, लूट और रंगदारी के मामलों में 20 अपराधियों को जेल भेजा गया है। इस दौरान 15 पिस्टल, 48 कारतूस और नक्सली संगठन पीएलएफआई के पर्चे बरामद किए गए हैं। सिमडेगा जिले के विभिन्न थानों में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया है। पिछले एक सप्ताह में 281 किलो जावा महुआ और महुआ शराब नष्ट की गई। पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली भट्टियों को भी ध्वस्त कर इसे अवैध कारोबार पर कड़ा अंकुश लगाया है। रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन स्थित क्रिकेटा ऑडिटोरियम में कल पूर्वाहन 10 बजे 135वें दुरंत कप 2026 के ट्रॉफी शोकेस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार मुख्य अतिथि और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना।

तो भानु, संध्या के 6:03 हो रहे हैं और उपस्थित हूँ मैं वंदना अर्चना कार्यक्रम अंगना में। तो सबसे पहले आप सबो को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, यह कथन बिल्कुल सटीक है कि जागरूकता ही महिला सुरक्षा और न्याय की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि किसी भी चीज के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम उसको अच्छी तरह से जान नहीं सकते और हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और जब महिलाएं अपने अधिकार और सुरक्षा कानूनों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगी तो वो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकती हैं। तो इसीलिए हमें

0: और घरेलू हिंसा संरक्षण कानून के प्रति जागरूक होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम अपने अधिकार के लिए या कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए हम आवाज उठा सकते हैं। तो ऐसे चीजों के लिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। साथ ही आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर यानी किसी भी संकट या किसी भी आपात स्थिति में तुरंत हमें अगर मदद चाहिए तो जो सहायता नंबर होती है, हेल्पलाइन नंबर होती है, पुलिस सहायता या महिला हेल्पलाइन नंबर, उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। और उन नंबरों को हमेशा हमें अपने पास रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल कर सकें। साथ ही सुरक्षा एप्लीकेशन और डिजिटल टूल्स यानी अपने स्मार्टफोन पर 112 इंडियन जैसे सरकारी सेफ्टी एप्स इंस्टॉल करना, साथ ही सी बॉक्स यानी कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न की शिकायत के लिए इस्तेमाल करना, ये सब हमें जानना चाहिए कि ये सब हमारे लिए ही बने हैं और हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। साथ ही आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस, शारीरिक सतर्कता और आत्मरक्षा के परीक्षण के लिए महिलाओं को किसी भी खतरे का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना। इसलिए आज सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सारे ऐसे जो वर्कआउट जो होते हैं जैसे जूडो वगैरह वगैरह होते हैं, ये सब लड़कियों को सिखाया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपना रक्षा खुद कर सकें। साथ ही आजकल बहनों डिजिटल युग का जमाना है तो हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, पर हमें साइबर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अक्सर इंटरनेट पर हम अपनी निजी जानकारी साझा कर देते हैं और हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी निजी जानकारी साझा करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हम उस डिजिटल उत्पीड़न से बच सकें। साथ ही हमें समान भागीदारी यानी समाज में महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव लाकर ही सुरक्षित वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। तो इसीलिए समाज का जो वातावरण तो सोच को बदलना बेहद जरूरी है, तभी हम इससे निकल पाएंगे और अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो हम कार्यक्रम में आगे और भी बातें करेंगे, मराई सुनते पहले ये जरूरी संदेश।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: भानु, जैसा कि हम बातें कर रहे थे और हम सभी जान रहे हैं कि समय तेजी से बदल रहा है और हम सभी को समय के साथ बदलना भी जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पहले बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, उन्हें बचपन से ही घरेलू काम सिखाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ये माना जाता था कि जो बेटियाँ हैं वे पराए धन हैं, तो इसीलिए उनकी पढ़ाई पर खर्च करना फिजूल खर्च में माना जाता था, उनकी शिक्षा पर ध्यान बिल्कुल नहीं। वहीं पर अगर बेटे हैं तो उन्हें पढ़ाया जाता था, क्योंकि उन्हें उनका मानना था कि जो बेटे होते हैं वो परिवार का कुल का नाम रोशन करते हैं।

पर समय बदला है और आज बहुत सारी बेटियां जो हैं बहुत आगे बढ़ रही हैं, अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। और जरूरी है कि जो बेटियों की शिक्षा होती है वो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज की भी जिम्मेदारी होती है कि बेटियों को पढ़ाया जाए, उनके उनके शिक्षा पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है। बेटियों की शिक्षा का जो पूरे समाज के विकास की बुनियाद है, जब एक बेटी शिक्षित होती है तो वह न केवल आत्मनिर्भर बनती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी संवारती है, बल्कि पूरे समुदाय का आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। कहा जाता है कि अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है और ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो शिक्षा को जितनी अच्छे से समझती वो अपने आने वाले पीढ़ी को उसके उसके बारे में बताती, उन्हें बताती हैं कि शिक्षा कितना ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा के बिना हम कोई भी जो आज समाज में हमारी जरूरत तो डिसीजन जो पावर होता है वो हम नहीं ले सकते। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे डिसीजन पावर नहीं होता है, हमें सही गलत के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या है, मगर जब हम पढ़ते हैं शिक्षित होते हैं तो हम उस डिसीजन को ले सकते हैं, सही गलत समझ सकते हैं। तो बहनों, परिवार के किसी भी बच्चे की पहली जो पाठशाला होती है वह परिवार होता है, तो इसलिए बेटियों की शिक्षा में इसकी अहम भूमिका होती है और इसलिए माता पिता को अपने बेटियों और बेटों में समान शिक्षा के अवसर देने चाहिए, घर का जो सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए और साथ ही पढ़ने के लिए सही संसाधन और जो भी उन्हें पढ़ाई के लिए चीज़ें जरूरत चाहिए उन्हें देनी चाहिए। साथ ही अगर बेटियां उस शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो उसका भी समर्थन करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही रूढ़िवादिता को तोड़ना यानी बेटियों को पराया धन जैसी सोच को बदलना और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना, साथ ही बाल विवाह पर भी रोक लगाना, और ये जरूरी होता है कि जो शिक्षा होता है वो पूरी होने के बाद ही उनकी शादी की जाए ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके और साथ ही बेटियों के करियर के लिए फैसला, उनकी महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी वो क्या चाहती है अपनी ज़िंदगी में उन्हें सुनना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। और समाज की जो भूमिका होती है, समाज की जिम्मेदारी होती है कि लड़कियों की शिक्षा में शिक्षा के रास्ते में आने वाले रूढ़ियों को तोड़ना, जो भी बाधा आती है उनका मिलकर सामना करना, साथ ही सुरक्षित वातावरण तैयार करना और लड़के और लड़कियों के बीच आने वाले सामाजिक भेदभाव को खत्म करना, साथ ही बाल विवाह को खत्म करना, दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करना और आगे बढ़ने वाली बेटियों को रोल मॉडल के रूप में पेश करना, समाज में मिसाल कायम रखना, तभी हम बेटियों की शिक्षा पर ध्यान दे सकेंगे और बेटियों को हम आगे बढ़ा सकेंगे। हम आगे और भी बातें करेंगे मगर आइए सुनते हैं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: तो बहनों, उम्मीद करती हूँ कि यह गीत आपको जरूर पसंद आया होगा। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक वार्ता, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं के अधिकार का पुनः प्रसारण। वार्ताकार है कुष्मा गुप्ता।
1: प्राचीन काल से आज तक महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा

एवं क्षमता का लोहा मनवा चुके हैं। इन सब के बावजूद हर समय उन पर होने वाले अन्याय, प्रताड़ना, शोषण आदि में कोई कमी नहीं आई है। घरेलू हिंसा दुनिया के लगभग हर समाज में मौजूद है। घरेलू हिंसा न केवल विकासशील या अल्प विकसित देश की समस्या है, बल्कि यह विकसित देशों में भी बहुत प्रचलित है। सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आते हैं, वे एक चिंतनीय स्थिति को रेखांकित करते हैं। हमारे देश में घरों के बंद दरवाजों के पीछे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, शहरों और महानगरों में भी हो रहा है। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक वर्गों, लिंग, नस्ल, आयु समूहों को पार कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए एक विरासत बनती जा रही है। घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। यदि किसी महिला ने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है, तो यह उसके लिए इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन हो जाता है। अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद उसकी सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। उस व्यक्ति को स्थिर जीवन शैली की मुख्य धारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं। घरेलू हिंसा की सबसे खतरनाक और दुखद स्थिति है कि जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं, जब वही हमें इस तरह का दुख देते हैं, तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है और वह स्वयं को अकेला कर लेता है। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। सीटी स्कैन से पता चलता है कि जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा में अपना जीवन बिताया है, उनके मस्तिष्क का कॉर्पस कॉलोसम और हिप्पोकैम्पस नामक भाग सिकुड़ जाता है, जिससे उनकी सीखने और समझने की शक्ति प्रभावित हो जाती है। ऐसा भी देखा जाता है कि बालक अपने पिता से गुस्सैल व आक्रामक व्यवहार सीखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे बच्चे कमजोर बच्चों तथा जानवरों के साथ हिंसा करते हुए देखे जाते हैं। बालिकाएं नकारात्मक व्यवहार सीखती हैं और वे प्रायः दब्बू, चुप रहने वाली और परिस्थिति से दूर भागने वाली बन जाती हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि हिंसा की शिकार हुई महिलाएं सामाजिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में कम भाग लेती हैं। घरेलू हिंसा दैनिक रूप से पीड़ा पहुंचाती है और यह उसके रोजमर्रे के कार्यों को प्रभावित करती है। और आम तौर पर इसके जो दुष्परिणाम दिखाई देते हैं, उसमें शामिल है पीड़ित महिला का अपना मानसिक संतुलन खो देना, साथ ही उसके आत्मसम्मान और आत्म मूल्यों में कमी आ जाना। घरेलू हिंसा को मुख्यतः चार श्रेणियों में हम बांट सकते हैं, जैसे शारीरिक हिंसा, मौखिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, यौन हिंसा और भावनात्मक हिंसा भी इसमें शामिल हम करते हैं। शारीरिक हिंसा को वैसी हिंसा है जिसमें शरीर को यातना दी जाती है और जिससे जीवन को खतरा होता है, जैसे पिटाई करना, गला घोटना, थप्पड़ मारना और हथियारों का उपयोग करना इत्यादि। मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा वह व्यवहार है जिसका उद्देश्य महिला के आत्मसम्मान को कम करना है और नष्ट करना है, जैसे गाली गलौज करना, अपमान करना तथा हिंसा की धमकी देना। आर्थिक में पैसे और अन्य धन संपदा जिन पर उसका हक है, उसे देने से मना कर देना। यौन हिंसा में ऐसे व्यवहार आते हैं जिससे महिला को अपमानित किया जाए और उसका सील भंग हो जाता है, तो उसे व्यक्तिगत चोट भी पहुंचे। आज हम महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं, इस बात की जानकारी साझा करेंगे। अगर हम महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहें, तो बहुत हद तक उन पर हो रहे अत्याचार से निपटा जा सकता है। जानकारी के अभाव में महिलाओं को अत्याचार सहना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं मालूम होने के वजह से उनके द्वारा गलत कदम उठ जाते हैं।

0: जिसका नुकसान उन्हें स्वयं पड़ जाता है। महिलाओं के सहयोग के बिना घर का विकास असंभव है। काम चाहे घर का हो या बाहर का, महिलाएं सभी कार्य में अपनी सहभागिता रखती हैं। एक महिला एक साथ कई रिश्तों को निभाती है, बेटी, बहन, सास बहू, ननद भाभी, पत्नी, माँ, सभी रिश्तों को एक सूत्र में पिरोकर चलती है। वो हमेशा प्रयास करती है कि सारे रिश्ते प्रेम पूर्वक सही ढंग से चले। अपने रिश्तों को बचाने के लिए महिलाओं में समर्पण की भावना रहती थी। धीरे धीरे इन भावनाओं में परिवर्तन शुरू हो गया। लोगों में अपने पराए की भावना आने लगी और बेटी अपनी है, बहू पराई, तो दोनों में व्यवहार भी अलग अलग दिखने लगे। सास और बहू के संबंध तथा ननद और भाभी के संबंध में प्रेम की जगह द्वेष दिखाई देने लगे। ये प्यारे रिश्ते अब एक दूसरे में कमी ढूंढने लगे तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने का अवसर तलाशने लगे। छोटी छोटी गलतियों को भी बहुत महत्व दिया जाने लगा। आपस की सारे प्रेम नफरत में बदल गए और घरेलू हिंसा की शुरुआत हो गई। जिस घर में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, घरेलू हिंसा की बढ़ोतरी के कारण आज उसी घर में असुरक्षित हो गई। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई सख्त नियम बनाए हैं, जिसमें सबसे शुरुआती कानून है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जिसमें दहेज लेन देन को अपराध बना दिया गया। 1986 में दो नई धारा 498A तथा 304B को जोड़कर दहेज प्रतिषेध अधिनियम को और अधिक मजबूत बनाया गया, जिसके तहत किसी भी विवाहित महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना है। इस अधिनियम के तहत महिलाएं स्वयं पर हो रही अत्याचारों के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है और इसके लिए उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। यदि किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध उसके पैसे, शेयर्स या बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वह इस कानून का इस्तेमाल करके इसे रोक सकती है। शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय को इस कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती है जिसमें वे रह रही हैं। इस कानून के तहत पीड़ित महिला किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती हैं, जैसे संरक्षण का आदेश पा सकती हैं, आर्थिक राहत के लिए वो अपना आवेदन दे सकती हैं, निवास का आदेश पा सकती हैं, मुआवजे का आदेश पा सकती हैं। विवाहित होने की दशा में महिला को अपने बच्चे की कस्टडी तथा मुआवजा मांगने का भी अधिकार है। सरकार ने वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएं प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से शिकार महिलाओं की सहायता के लिए चिकित्सीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुंच को सुगम और सुनिश्चित करता है। वन स्टॉप सेंटर में हिंसा से पीड़ित महिला अपने बच्चे के साथ अस्थायी रूप से रह सकती है। लंबे वक्त के लिए यदि आश्रय की जरूरत हो तो उन्हें स्वाधार गृह आदि में भेजने की व्यवस्था भी की जा सकती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वन स्टॉप सेंटर स्कीम के तहत संचालित ऐसे हेल्पलाइन नंबर 181 तथा 1090 के साथ काम करती है। सेंटर महिला को FIR दर्ज कराने में भी मदद करती है। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यदि हम सही मायने में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो वक्त आ चुका है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक तौर पर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए तथा हमें पुरुषों को न केवल समस्या का एक कारण बल्कि उन्हें इस मसले के समाधान के अविभाज्य अंग के तौर पर देखना होगा।
1: तो बहनों, उम्मीद करती हूँ कि इस वार्ता से आपको जरूर फायदा हुआ होगा और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। फिर मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी। तो इसी के साथ

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंगना। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: श्रोताओं, दिनांक 18 जुलाई 2026 को व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। तो आइए सुनते हैं इसी से संबंधित जरूरी संदेश।
1: लौट कर बैंक से चेक वापस आ जाए घर, लौट कर बैंक से चेक वापस आ जाए घर, जो धड़कने लगे दिल, लगने लगे डर, तो विकल्प आपके पास अब भी है शेष, तो विकल्प आपके पास अब भी है शेष। 18 जुलाई 2026 को लगने जा रही अदालत विशेष, लगने जा रही अदालत विशेष। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण झालसा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA हजारीबाग की ओर से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर हजारीबाग के नेतृत्व एवं DLSA हजारीबाग के माननीय सचिव महोदय के मार्गदर्शन में 18 जुलाई 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत

0: अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस से जुड़े मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर समाधान करना है। इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के अपने विवाद का शांतिपूर्ण समाधान कर सकते हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: और आई कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में गाए फिल्म हमराज का ये नगमा।

0: आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पे समाप्त हो। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। हमारे अगले प्रसारण के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: MyGov पर एक मेल भेजा और रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के मुरी और पिस्का समेत देशभर के 75 रेलवे स्टेशनों का किया वर्चुअल लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कृषि विभाग की उच्च स्तरीय बैठक। आधुनिक कृषि का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश। राज्य के उद्योग सचिव ने नई दिल्ली में आयोजित भारत

0: एक्स में झारखंड पवेलियन का किया दौरा, पारंपरिक उत्पादों और तसर सिल्क को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर बल। रांची में पेंशन समावेशन के लिए एनपीएस संचय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित, किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने पर बल। और हॉकी इंडिया ने महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की, झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन, सलीमा टेटे संभालेंगी टीम की कमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें झारखंड के पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: नए भारत की आधुनिक अवसंरचना में आज एक और नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का लोकार्पण किया है। इनमें झारखंड के मोरी और पिस्का स्टेशनों को लगभग 10-10 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय बनाया गया है। अब यहाँ यात्रियों को लिफ्ट, एस्केलेटर, भव्य वेटिंग रूम और दिव्यांगों के अनुकूल विशेष सुविधाएं मिलेंगी। बदलते स्टेशन और बेहतर सफर की यह तस्वीर विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है। आकाशवाणी रांची के समाचार कक्ष से मैं पूनम करकेटा।
0: मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है।
2: जो भारतीय रेल है, एक गरीब परिवारों की, मिडिल क्लास परिवारों की सवारी है। केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, परिवहन मंत्री दीपक बिरवा और अन्य गणमान्य लोगों ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का रेलवे स्टेशन के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने इस पुनर्विकास को राज्य के विकास में एक मील का पत्थर बताया।
3: अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये पुनर्विकसित पिस्का तो मुरी रेल स्टेशन का उद्घाटन झारखंड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये योजना केवल रेल स्टेशनों के पुनर्विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सांस्कृतिक विरासत जोड़ने का एक दूरदर्शी प्रयास है।
0: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिवसीय कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक महिला को गरिमा और बिना किसी भय के काम करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें मानसून की स्थिति, सिंचाई परियोजनाओं और किसान समृद्धि योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कौशल विकास मिशन सोसाइटी में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कथित फर्जी बैंक गारंटी मामले की न्यायिक जांच और दोषी अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए सरकार को घेरा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 के समापन पर उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने झारखंड पवेलियन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तसर सिल्क और जनजातीय हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। इस आयोजन से स्थानीय बुनकरों और महिला उद्यमियों को नए व्यापारिक अवसर मिलेंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे

0: पेंशन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज एनपीएस संचय आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और पीएफआरडीए के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में नाबार्ड और विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन योजना से जोड़ने पर बल दिया।
1: हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। उसमें पेंशन सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और वो पेंशन सोसाइटी तब तक नहीं बनेगी जब तक इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़े हुए लोग सबके पास उनके पास पेंशन ना हो। उसी को इंश्योर करने के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं एनपीएस संचय। एनपीएस संचय एक ऐसी योजना है जिसमें 18 से 85 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। मिनिमम 250 रुपए से खाता खुल सकता है।
0: गढ़वा जिले में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शत प्रतिशत गणना प्रपत्रों का वितरण पूरा हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपतिनाथ मिश्र ने बताया कि 8,62,000 से अधिक प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। प्रशासन का लक्ष्य 5 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का अंतिम प्रकाशन करना है। पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आज जिला स्तरीय तकनीकी पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने काम में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह संवेदकों को डिबार करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 20 जुलाई को विशेष बैठक बुलाई है। रांची के गैलेक्सी मॉल स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को आज ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूचना मिलते ही सुखदेव नगर थाना पुलिस और झारखंड जगुआ की बीडीडीएस टीम मौके पर पहुंची और पूरे भवन की सघन तलाशी ली। बीडीडीएस के अधिकारी ने बताया कि तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।
2: थेट जहाँ के लिए मिले रहता है, हम लोग बारीकी से सारा चीज हम लोग जांच करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऊपर नीचे आउटर इनर सब कोई भी जगह नहीं छोड़ते हैं हम लोग। गैलेक्सी मॉल में पासपोर्ट ऑफिस का जांच किए जहाँ धमकी आया था, इसके बाद बाहर फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सभी जगह जांच किए, वैसा कुछ नहीं मिला।
0: मौसम विभाग रांची ने 21 जुलाई तक भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। आज और कल रांची, गुमला, लातेहार और रामगढ़ समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। हॉकी इंडिया ने अगस्त में होने वाली महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जबकि सिमडेगा की सलीमा टेटे टीम की कप्तान चुनी गई हैं। टीम में निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग भी शामिल है। रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन स्थित क्रिकेटा ऑडिटोरियम में कल पूर्वाहन 10 बजे 135वें दुरंड कप 2026 के ट्रॉफी शोकेस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार मुख्य अतिथि और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के मुरी और पिस्का समेत देशभर के 75 रेलवे स्टेशनों का किया वर्चुअल लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कृषि विभाग की उच्च स्तरीय बैठक। आधुनिक कृषि का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश। राज्य के उद्योग सचिव ने नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स में झारखंड पवेलियन का किया दौरा। पारंपरिक उत्पादों और तसर सिल्क को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर बल। रांची में पेंशन समावेशन के लिए एनपीएस संचय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित। किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने पर बल। और हॉकी इंडिया ने महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन, सलीमा टेट्टे संभालेंगी टीम की कमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं माय गॉव पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई।

0: सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
1: आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता।
1: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिमडेगा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कंचन सिंह और पदाधिकारी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दे रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि
2: सिमडेगा जिले में काफी जोर शोर से तैयार का काम प्रगति पर है और जिले के लगभग 62% मतदाताओं का जो इनोमिनेशन फॉर्म है वो डिजिटाइज भी किया जा चुका है। बाकी मतदाताओं से भी अपील है कि वो जल्दी जल्दी अपना फॉर्म भर करके अपने बीएलओ को दे दें और यथाशीघ्र अपना फॉर्म डिजिटाइज करा दें। इस कार्य को गति देने के लिए हमारे जितने भी बीएलओ हैं वो आपके घर घर जाएंगे और जिनका भी इनोमिनेशन फॉर्म नहीं अभी तक कलेक्ट हो पाया हो भरा हुआ उनसे वो फॉर्म लेकर के डिजिटाइज करने का काम करेंगे। तो सभी लोग अपने घरों में रहें और जो बीएलओ जाएं तो उन्हें कृपा करके इनोमिनेशन फॉर्म अपने हस्ताक्षर के साथ लौटा दें ताकि जो बाकी बचे मतदाता है उनका भी डिजिटाइजेशन हो सके और जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल है उस पर उनका नाम दर्ज किया जाना सुनिश्चित।
1: भाई और बहन के पवित्र प्रेम के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी भागीदारी निभाते हुए डाक विभाग ने राखी भेजने के लिए एक विशेष लिफाफा उपलब्ध कराया है। सिमडेगा के मुख्य डाकघर में सजाए गए काउंटर में 10 रुपए में इस लिफाफे की बिक्री की जा रही है। मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर विजय चौधरी ने बताया कि
3: डाक विभाग सिमडेगा मुख्य डाकघर की ओर से राखी के शुभ अवसर पर सभी बहनों को संदेश दिया जा रहा है कि प्रत्येक डाकघर में राखी के लिए लिफाफ बेचा जा रहा है जो वाटरप्रूफ लिफाफ है। लिफाफ की कीमत लगभग 10 रुपया है और इसके रेस्टी चार्ज 55 रुपया है। कुल मिलाकर 65 से 70 रुपयों में आपके भाइयों की कलाइयों तक डाक विभाग के द्वारा राखी पहुंचा दी जाएगी। दूसरी बात है कि इसके राखी के अवसर पर एक डाक विभाग प्रतियोगिता रखा गया है प्रत्येक स्कूल में। जो प्रतिभागी अच्छे राखी का प्रदर्शन करेंगे उसे डाक विभाग द्वारा दिया जाएगा।
1: सिमडेगा जिले में कई उत्साही युवा श्री हनुमान वाटिका युवा संगठन और बजरंग दल के बैनर तले गौ सेवा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सड़क दुर्घटना में घायल गोवंश की सेवा कर ये युवा समाज के सामने प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री हनुमान वाटिका के मुख्य पुजारी सोमनाथ मिश्रा ने बताया कि
4: मेरा नाम सोमनाथ मिश्रा है, मैं इस हनुमान वाटिका मंदिर का पुजारी हूँ। इस मंदिर से बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। सिमडेगा में कहीं पर भी अगर किसी गौ माता गौवंशी पशुओं का किसी सड़क दुर्घटना में मतलब कोई चोट लग जाता है, कोई घायल हो जाती है या फिर कोई बीमार पशु होते हैं तो उन गौ माता को गौवंशीय पशुओं को इस मंदिर परिसर में लाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा और मंदिर के पुरोहित श्री जगदीश मिश्रा, श्री मणि मिश्रा और हम लोगों के सहयोग से उनका उचित उपचार इलाज किया जाता है। अब तक इस परिसर में करीब 60-70 गौवंशीय पशुओं गौ माताओं का सफलतापूर्वक इलाज हुआ है और आगे भी हम लोग जो है इस क्रम को बनाए रखेंगे और गौ माता के संरक्षण के लिए और उनके साथ जो हो रही दुर्घटनाएं उन पे लगाम लगे इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे।
1: सिमडेगा जिले में रथ यात्रा धूमधाम से मनाई गई। जिले भर में 18 स्थानों में रथ यात्रा का आयोजन कर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों को मौसीवाड़ी तक ले जाया गया। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
0: अभी आप सुन रहे थे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:30 हो रहे हैं। पेश है हमारा साप्ताहिक खेल गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम खेलेंगे सांसे।

0: संकलन एवं वाचन दिया है रानी सहाय ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है राजीव कुमार और संयोजक है विक्रम कुमार रंजन। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेलेंगे सान से।
1: खेलेंगे शान से खेल गतिविधियों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से में आप तमाम खेल प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रानी। दोस्तों, खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का भी माध्यम है। खेलने से हमारे शरीर की शक्ति बढ़ती है और हम तंदुरुस्त रहते हैं। इसके साथ ही खेल हमें विज्ञान, मनोविज्ञान, संगठना, अनुशासन और नैतिकता की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार और लोकप्रिय खेल की, जो न सिर्फ खेलने में मजेदार है बल्कि हमें सेहतमंद भी रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन की। दोस्तों, बैडमिंटन सिर्फ एक रैकेट और शटल कॉक का खेल नहीं है, यह एक बेहतरीन फुल बॉडी वर्कआउट है। इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। आज हम आए हुए हैं जिला खेल कार्यालय हजारीबाग की ओर आयोजित जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता 2026 अंडर 19 एवं सीनियर 19 आयु वर्ग के लिए दिनांक 12 से 13 जुलाई 2026 बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम हजारीबाग में आयोजित की जा रही है। इस खेल के मुख्य अतिथि हजारीबाग के उपायुक्त श्री हेमंत सती हैं। तो जानते हैं दो शब्द इस खेल के बारे में उपायुक्त श्री हेमंत सती जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खेल गतिविधियों के इस कार्यक्रम में। सर, बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता आज यहाँ आरंभ हो चुकी है, तो इसके बारे में आप दो शब्द हमारे श्रोताओं को क्या कहें?
2: सबसे पहले तो मैं खेल विभाग का और पूरे जिला प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित कराई गई है। इसका उद्देश्य एक ही है कि ऐसे प्रतिभागी जिनको प्रतिभा का मंच प्रोवाइड नहीं हो पाता है, उनको एक ऐसा मंच प्रोवाइड करवाना जिससे जो उनका खेल है, जो उनका व्यक्तित्व है, वो बाहर निकल करके आए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, खेल इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि खेल से हमारा शारीरिक विकास होता है, वरन खेल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि खेलों से हमारा मानसिक विकास भी होता है, और सबसे बड़ी बात कि बच्चा उससे जो बुरी संगति है उस बुरी संगति से जाने में भी बचता है। तो खेल एक ओवरऑल व्यक्तित्व का विकास करता है, इसीलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आने वाले टाइम पर भी हम इस तरीके का आयोजन, प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाते रहे।
1: सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में। हम बात करते हैं जिला खेल पदाधिकारी कैलाश राम जी से। तो आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है कैलाश राम जी। नमस्कार, जोहार।
3: नमस्कार, जोहार।
1: इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में कुल कितने क्लबों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं?
3: यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का बैडमिंटन प्रतियोगिता कराया जा रहा है। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार ये प्रोग्राम कराया जा रहा है, जिला खेल कार्यालय के थ्रू ही कराया जा रहा है। इसमें बैडमिंटन एसोसिएशन भी इसमें पार्टिसिपेट लिए हुए है, और ये पूरा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के ही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट लिए हुए हैं।
1: इसे भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए कौन से आयु वर्ग, जैसे सब जूनियर, जूनियर, सीनियर या मास्टर्स, और श्रेणी में रखे गए हैं?
3: अभी तो ये ट्रायल चल रही है। इसमें से अंडर 19 एक है, अंडर 19 बालक बालिका है, और सीनियर है, अंडर 19 सीनियर 19, उसमें से महिला पुरुष है, सिंगल है, डबल है, दोनों गेम चल रहे भी है।
1: आपको कैसा अनुभव हो रहा है?
3: ये तो मेरा ये तो सर जब आए हैं उनके निर्देशन में तो हमको लग रहा है बहुत खुशी हो रही है कि ये गेम कराया जा रहा है। हाँ, और इसमें बच्चे सब बहुत खुश हैं,
1: बच्चे उत्साहित
3: सभी। हाँ, लगभग 100 से 150 के बच्चे पार्टिसिपेट लिए हुए हैं यहाँ
1: बच्चे।
3: हाँ, बहुत खुशी में, मतलब बच्चे को देख रहे, चेहरा देख रहे तो लग रहा है कि सब उसको एक अच्छा मंच मिला है, और उन लोग बहुत लालायित है कि कब उनको चांस दिया जाए इस मंच का प्रयोग कर सके। सब
1: खिलाड़ियों के आराम के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पे, इसके बारे में भी आप थोड़ी जानकारी दें।
3: ये हजारीबाग में इंडोर स्टेडियम बना हुआ है, यहाँ तीन खिलाड़ियों के लिए तीन बैडमिंटन कोर्ट बने हुए है। इंडोर में ही तीन कोर्ट बना हुआ है, यहाँ टेक्निकल भी है और बच्चों को सुविधा के लिए ये तीन कोर्ट बना हुआ है। प्लस जो बच्चे पार्टिसिपेट लिए है उनको नाश्ता दिया जा रहा है, कैश अवार्ड भी दिया जा रहा है।
1: बहुत अच्छी बात। इस जिला स्तरीय टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तर के लिए सीधे नामांकित या चयनित किया जाएगा क्या?
3: नहीं नहीं, ये अभी उसका चयन नहीं हो रहा है, ये बच्चों को भी ट्रायल करवा रहे हैं हम लोग, ताकि बच्चे को देख सके कि यहाँ की जो हजारीबाग के जो बच्चे हैं उसमें क्या प्रतिभा है। सर उपायुक्त सर के निर्देशानुसार ये कि बताया जा रहा है कि क्या प्रतिभा है, यहाँ तक निखारा जा सके, फिर इस चयन प्रतियोगिता कराया जाएगा, फिर यहाँ सिलेक्शन करके आगे खेलने के लिए भेजा जाएगा, स्टेट नेशनल इंटरनेशनल ये गेम कराया जाएगा।
1: विजेताओं और उप विजेताओं को प्रोत्साहन के रूप में क्या नगद पुरस्कार ट्रॉफिया या प्रमाण पत्र दिए जाएंगे क्या?
3: बच्चों को प्रोत्साहन के लिए जो सर्टिफिकेट होते वो दिए जाएगा, प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। दूसरे में उनको कैश अवार्ड दिया जाएगा, जो प्रथम सिंगल जो रहेंगे प्रथम उसको 5,000 रुपया, सेकेंड जो लाएंगे सेकेंड स्थान जो लाएंगे उसको 2,500 रुपया, और जो तीसरा स्थान प्राप्त करेंगे उनको 1,500 रुपया दिया जाएगा। और डबल्स में 5,500 रुपये दोनों को, प्रथम स्थान जो प्राप्त करते हैं 5,500 रुपये दोनों का, और सेकेंड स्थान जो प्राप्त करते हैं उन लोग को 2,500 रुपये दोनों का, और थर्ड स्थान प्राप्त करते हैं उसको 1,500 रुपया, कुल 3,000 रुपये उन लोग को दिया जाएगा।
1: बहुत अच्छी बात है, बच्चे प्रोत्साहित होते हैं और काफी आगे भी बढ़ते हैं। जिले में बैडमिंटन खेल विकास और उभरती हुई युवा प्रतिभाओं को आगे का प्रशिक्षण देने के लिए संघ की क्या योजनाएं के बारे में
3: यहाँ बच्चों को सुविधा के लिए और उनको आगे को मतलब उज्जवल भविष्य के लिए जो उपायुक्त सर हुए हमारे आदरणीय उपायुक्त सर हेमंत सती सर, उन्होंने डीएमएफटी फंड से एक कोच का भी मतलब दे रहे हैं, ताकि बच्चों को अच्छा से प्रशिक्षण समय और उसका तकनीकी के रूप में प्रशिक्षण दिया जा सके।
1: आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को आगे के लिए?
3: बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जिला खेल पदाधिकारी कैलाश राम बोल रहे हैं, बच्चों को ये हम बताना चाह रहे हैं कि आप लोग खेल से जुड़िए और बाहर में जो नशा से मुक्त रहिए, नशा अभियान सरकार के द्वारा जो चलाया गया है उससे आप लोग बाहर रहिए। नशा खराब चीज होती है, अपने साथ साथ पूरे परिवार को खराब कर देते हैं, इसलिए खेल से जुड़िए। खेल से जुड़ने से लोग अनुशासन में रहते हैं और देश की भागीदारी में सहयोग करते हैं।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: हर जीत की कहानी, बढ़ते हैं इस खंड की ओर और जानते हैं कुछ बच्चियां से जो बैडमिंटन खेल में आज काफी आगे बढ़ चुकी हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप रहने वाली कहाँ?
4: मैं रहने वाली हजारीबाग की हूँ। मेरा नाम अपराजिता है। मुझे प्रेरणा मिली अपने पापा से, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत अच्छे बैडमिंटन के प्लेयर थे। मैं जोनल तक खेल चुकी हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। और कब से खेल रही हैं आप?
4: मैं क्लास 4 से खेल रही हूँ।
1: और कहाँ कहाँ गई है नेशनल लेवल पे, आपने जीता है कभी?
4: हाँ, मैं नेशनल लेवल पुणे में खेली हूँ।
1: और भी कुछ कहेंगी, कैसा अनुभव हुआ जब आप जीत हासिल की इस खेल में, तो आपको कैसा अनुभव हुआ?
4: मेरी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रही। जब मैं जीती तो बहुत लोग खुश हुए, हजारीबाग के एसोसिएशन वाले बहुत का अच्छा सपोर्ट रहा है मुझे।
1: अब आप जीती थी?
4: मैं क्लास 9th में नेशनल खेल ली।
1: और अभी फिलहाल आप
4: रिसेंटली ईस्ट जोन खेली हो?
1: बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और भविष्य में अपना नाम रोशन कीजिए, आपको सफलता मिली, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब हम बढ़ते हैं, कुछ बच्चियां और भी हैं जो बैडमिंटन खेल से जुड़ी हों और काफी आगे बढ़ रही हैं, तो जानते हैं। अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका?
5: मेरा नाम अनन्या गिरी है।
1: अच्छा, आप कब से जुड़ी हुई बैडमिंटन खेल से?
5: क्लास 6 में खेलना शुरू किया था 2023 में।
1: अभी आप खेलने आई हैं, बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता में भाग ली हैं, कैसा लग रहा है, अनुभव कैसा हो रहा है अभी?
5: अच्छा है, और काफी दिनों के बाद टूर्नामेंट हो रहा है तो काफी अच्छा लग रहा है।
1: इसी तरह आगे बढ़िए। और भी बच्चियां हैं, आपसे जानेंगे आपका नाम?
6: मेरा नाम अवनी खंडेलवाल, मैं क्लास 4 से खेल रही हूँ और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आज टूर्नामेंट हो रहा है, लाइक काफी दिनों बाद ये टूर्नामेंट हो रहा है। हाँ, और मैं नेशनल्स भी खेल रखी हूँ, मैंने क्लास 7 में नेशनल्स खेला है।
1: बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते रहिए। आज भी आपने सोचा है कि यहाँ से जीत कर ही जाना है?
6: हाँ हाँ, मैंने यही सोचा है कि आज भी यहाँ से जीत के जाना है।
1: और प्रेरणा किससे हासिल की आप?
6: मुझे मेरी मम्मी से प्रेरणा मिली है। अच्छा। मेरी मम्मी भी खेलती है।
1: अभी आपको कौन प्रशिक्षण दे रहे हैं?
6: अभी मुझे पवन सर या अश्विनी सर वो खिलवा रहे।
1: हाँ। आप कब आती हैं, पढ़ाई से कैसे समय निकालती हैं अपना?
6: स्कूल रहता है, उसके बाद ट्यूशन के बाद इधर आती हूँ।
1: चलिए, और भी बच्चियाँ, उनसे भी हम जानते हैं, आप अपना नाम बताइए।
7: मेरा नाम निष्ठा राणा है।
1: जी, कैसा लग रहा है अभी आपको, आप आइए बैडमिंटन खेलने, यहाँ पे आइए, प्रतियोगिता में भाग लिया है, कैसा अनुभव हो रहा है?
5: अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफी दिनों के बाद टूर्नामेंट।

0: एक और एक्सपीरियंस मिलेगा हमें।
1: आपका नाम क्या हुआ?
0: निष्ठा राणा।
1: निष्ठा रानी, रहने वाली कहाँ?
0: हजारीबाग के।
1: अपना नाम बताइए, क्या नाम है?
2: मेरा नाम आराध्या तिवारी है।
1: आप किससे सीख रही हैं बैडमिंटन खेल?
2: मैं अपने कोच से।
1: नाम क्या है?
2: अश्विनी सिंह। हम 4 साल से सीख रहे हैं।
1: 4 साल से। किस स्कूल में पढ़ती हैं आप?
2: हम डीएवी पब्लिक स्कूल हजारीबाग से पढ़ते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है। अभी कैसा अनुभव हो रहा है आपको?
2: हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हमारे कोच और डीसी श्री हेमंत सती की वजह से ये टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, क्या नाम है आपका?
3: रूपांशु कुमारी।
1: क्या कब से आप खेल?
3: 2019 से।
1: किससे जुड़ी हुई है? अभी कहीं खेलने भी गई है क्या बाहर?
3: एक स्टेट खेले हैं, नेशनल नहीं गए अभी तक। इंटर कॉलेज खेले, लेकिन सारा योगदान हमारे राणा सर का है। अगर ये नहीं होते तो शायद हम यहाँ तक भी नहीं पहुँचे। यहाँ तक पहुँचाने के लिए इनका मदद मिला। इनसे मदद ये भी मिला कि इन्हें रैकेट भी दिया मुझे। हम उन फाइनल से इतना स्ट्रांग भी नहीं थे, जब रैकेट खरीदे शूज भी नहीं खरीद सकते थे, तब राणा सर मदद किए।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरह खेल से जुड़े रहिए, बैडमिंटन खेल में आप काफी आगे बढ़ रही है, बढ़िए आगे। आप बताइए अपना नाम।
4: मेरा नाम होली साक्षी रोबा है।
1: आप भी खेल रही हैं?
4: जी मैं भी खेल रही हूँ,
1: भाग ले रही हैं।
4: जी
1: कैसा लग रहा है आपको?
4: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि मैं जीत जाऊंगी। मैं ओपन खेल रही हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है, जीत हासिल हो यही हम कामना करते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खेल टिप्स के बारे में। रोजाना कम से कम 30 मिनट कोई भी शारीरिक खेल जरूर खेलें, क्योंकि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आपको ऊर्जावान और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की चाबी है। खेल में हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका प्रयास और अनुशासन है। अपनी गलतियों से सीखें और हर दिन एक नए जोश के साथ मैदान में उतरे। खेल अपडेट्स कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देश दुनिया की हालिया खेल गतिविधियां। दोस्तों हम आपको बता दें, लॉर्ड्स के मैदान पर जारी इतिहास के पहले महिला टेस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन लगातार जारी है। मुकाबले के तीसरे दिन विकेटकीपर बैटर यस्तिका भाटिया इस मैदान पर शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। हम आपको बताते चले, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने लगातार 6 T20 मैच हारने और नंबर 1 की कुर्सी गंवाने के बाद कप्तानी की निराशाजनक शुरुआत पर खुलकर बात की। इंग्लैंड के हाथों 0-4 और आयरलैंड से 0-2 से सीरीज हारने के बाद श्रेयस ने कहा, इन मुश्किल चुनौतियों से उन्हें भविष्य में बेहतर लीडर बनने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, इस सफल टीम की कमान संभालने से दबाव आता है, लेकिन मुझे दबाव में खेलना पसंद है। इन मुश्किल पलों से सीखकर मैं एक बेहतर लीडर बनूंगा। मैं लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि हार जीत खेल का हिस्सा है। दोस्तों हम आपको बताते चले, भारतीय प्रतिभा ने एक बार फिर पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेरी है। कोलंबिया के मुकारा मांग में आयोजित 56वीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए संयुक्त रूप से विश्व में पहला स्थान हासिल किया है। इसी के साथ खेल गतिविधियों के इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त रानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार श्रोताओं, अब कार्यक्रम से विदा लेने का समय आ गया है। चलते चलते आपसे आग्रह, आप कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया या सुझाव हमें अवश्य भेजें। हमारा पता है, कार्यक्रम खेलेंगे शान से द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग। खेल गतिविधि कार्यक्रम से मुझे यानी रानी सहाय को अनुमति दे। नमस्कार।
5: तो भी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से। संकलन एवं वाचन दिया था रानी सहाय ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन।

0: तो अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर को, तो प्रोग्राम का आखिरी नगमा हम आपको सुना रहे हैं, आवाज है किशोर कुमार की।
1: जिंदगी कभी पलों में गुजर जाती है, कभी जिंदगी भर एक पल नहीं गुजरता। इंद्र की जिंदगी में भी ऐसा ही एक पल ठहर गया था जिसे वो आरती के नाम से पहचान सकता था। रात गुजर रही थी लेकिन वो एक पल सारी रात पर भारी था। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज रहे हैं और पेश है फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

और आपके प्यार भरे खतों के साथ हाजिर हूँ कार्यक्रम आपकी चाहत में। आपके फरमाइशी गीतों के साथ तो प्रोग्राम में पहला खत शामिल हमने किया है, आप हैं बड़का काना से, रविंद्र वर्मा, रेनू, रिया, उर्वशी, अमन, बेबी, सोना और आरके वर्मा। आप हैं केरेडारी से, देवदत्ता तिवारी, सचिदानंद तिवारी और मंजू बाला। आप हैं हजारीबाग से, संतोष कुमार, रश्मि कुमारी, रितेश कुमार, पूजा पांडे, दीपाली कुमारी, हर्षिता, हर्षित कुमार और अभिनव कुमार। और इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है, आप हैं मुनका बगीचा से अजीत, अंतु, रमेश, पिंटू और रामनगर से आप हैं नेहा, गोलू, अनीक, छोटू और इनके ढेर सारे दोस्त। तो आइए प्रोग्राम का पहला नगमा सुनते हैं आप सबों के फरमाइश पर।

यह खत आया है ग्राम धुर्रा बांधा से, भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेतराम साहू और भूपेंद्र। आप हैं नूरा हजारीबाग से, बिहारी महतो, रविंद्र कुमार, अरविंद कुमार, निखिल, बालेश्वर प्रसाद, उमेश प्रसाद, बॉबी कुमार और डब्लू प्रसाद। और आप हैं भरकट्टा से हेमंत कुमार, संगीता भारती, तुषार, पूजा, विनायक और नितिन। तो आइए आप सबों के फरमाइश पर सुनते हैं।

ये खाता है डेमोटार हजारीबाग से। आप हैं श्रुति, राधिका, मिली, मधु, विनीता, रघु, आशीर्वाद, गोपाल, भैरवी, मधुसूदन और आप हैं माला, अजीत, अमन और सुधीर। यह खत आया है न्यू एरिया दूसरी गली हजारीबाग से। आप हैं अनन्या, बुलबुल, प्रियांशु और टिनटिन। आप हैं कुमार टोली से सुधा सहाय, आलोक सहाय, मनीषा और इनके ढेर सारे दोस्त। तो आइए इन सबों के फरमाइश पर सुनते हैं।

इस गीत के लिए फरमाइश भेजी थी आप है बड़का गांव से उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र, अनिल, साकेत, शुभम, नर्मदा, अक्षता, प्रियंका, समीम, अपराजिता, टुक टुक, अपूर्व और परिवार के सभी सदस्य। और आप हैं रांची से सचिदानंद दुबे, नटवर निर्मोही, कुमार दिवाकर और सत्यम सावरिया। और आप हैं मधुबनी बिहार से सोभी कांत झा, हेमलता सज्जन, मनोज, लक्की, मोहित, परी, सरोज, स्तुति, नैतिक, सोनाक्षी, अर्चना, विवेक और मास्टर

इसके सज्जन। और प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और इसके लिए फरमाइश भेजी है। आप हैं खिरगांव से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास, जितेंद्र, रितेश, रोहित, अनिकेत, ऋषि और राहुल। और आप हैं रेलवे स्टेशन हजारीबाग से समीम अहमद, सह गुप्ता परवीन, नूरजहां बेगम, तहसीन बानो, खलील अहमद, एहसान अहमद, आरजू और नसीम अहमद। और आप हैं बड़काकाना से अफजल, ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी। तो आइए आप सबों की फरमाइश पर सुनते हैं।

और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी थी मटवारी हजारीबाग से। आप है अमित चैटर्जी, करुणा चैटर्जी, बन्नी और जॉय चैटर्जी। और आप हैं पत्रातों से बेसिल खलको, मधु, रितु, रचना, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, नदीम, मनीषा और इनके ढेर सारे दोस्त।

अभी आप सुने थे फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम आपके चाहत। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज @9 हमारे दिल्ली केंद्र से। हमारे अगले प्रसारण के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहां लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ

0: हेल्थकेयर, स्टार्टअप और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
2: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देशभर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा

0: शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन के खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister says centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Niti Aayog releases Investment Friendliness Index 2026. Gujarat emerges as the top performer, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. An Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार। आज बातें एक ऐसी अदाकारा और गायिका की जिन्होंने अपने आगमन से ही फिल्मी दुनिया में मचा दी थी हलचल। उनकी आवाज के सभी थे इतने कायल कि हर गाना होता था सुपरहिट। पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में तब कदम रखा था जब फिल्में होती थीं बेआवाज। उन्होंने जीता दिल क्योंकि था उनका अलग ही अंदाज। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज बातें होंगी अभिनेत्री और गायिका कानन देवी की।

कानन देवी एक अदाकारा और गायिका ही नहीं थी बल्कि वो तो फिल्मी दुनिया में महिलाओं के लिए एक पहल बनकर आई, क्योंकि ये वो दौर था जब तथाकथित सभ्य समाज की महिलाओं का फिल्मी दुनिया में आना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। कानन देवी आगे चलकर भी फिल्मी दुनिया में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में अग्रणी रही और कई काम भी उन्होंने इसके लिए किए, लेकिन वो बातें बाद में। अभी पहले सुन लेते हैं कानन देवी की वो आवाज जिसने अपने नाम कर ली थी लाखों दिलों की।

कानन देवी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मात्र 10 साल की उम्र से ही कर ली। वो दौर मूक फिल्मों का था। मूक फिल्मों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने बोलने वाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो बांग्ला की पहली स्टार कही जाती रही हैं। पहली फिल्म 1926 में आई जिसका नाम था जयदेव। बोलने वाली फिल्मों के दौर में कानन देवी ऐसी अभिनेत्रियों में भी अग्रिम पंक्ति में आती हैं जो पर्दे पर खुद के लिए गाया भी करती।

तकरीबन 4 दशकों तक कानन देवी फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहीं। मूक फिल्मों से उन्होंने बांग्ला फिल्मों की ओर अपने करियर को आगे बढ़ाया। वो कई बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ फिल्में करती रहीं। वो दौर ऐसा था जब अभिनेता अभिनेत्री फिल्म थिएटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम किया करते थे, जिसमें उनका प्रति महीने का एक निश्चित वेतन तय किया जाता था और इसके बदले एक निश्चित समय के लिए अभिनेता अभिनेत्री उनके अलावा किसी और के साथ काम नहीं किया करते थे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कानन देवी ने उस समय कोलकाता के मशहूर फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर के साथ करार किया। इसके पहले और बाद में भी अन्य कई बैनर्स के साथ वो करार में रहीं, जैसे मदन थिएटर, ज्योति थिएटर, राधा थिएटर आदि। उन्हें इस दौर की अभिनेत्रियों से ज्यादा मेहनताना भी दिया जाता था, क्योंकि कानन देवी के अभिनय के साथ साथ उनके गीत सफलता के अलग पायदान छुआ करते।

यहाँ कानन देवी के सफलता के किस्से सुनकर हम उनके कायल हो रहे हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उन्होंने सफलता के शिखर को छूने के लिए कड़ी मेहनत से काम लिया। 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जन्मी कानन देवी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता के व्यसन की आदत के कारण पहले गरीबी का सामना करना पड़ा और बाद में पिता के गुजर जाने के बाद नन्ही कानन देवी पर बचपन से ही माँ और स्वयं के जीवन यापन का बोझ भी आ गया। यहीं से शुरुआत हुई उनके अभिनय जीवन की।

अपने छोटी सी उम्र से ही फिल्मी पर्दे पर मूक फिल्मों में काम की शुरुआत करने के कारण कानन देवी ने तो ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है, जिसमें उस दौर में फिल्मी दुनिया में आई महिलाओं की स्थिति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने बेबाक अंदाज में अपने कई सह अभिनेताओं की असुरक्षा की भावना का भी उल्लेख किया है। कानन देवी उन पहली अभिनेत्रियों में से एक रहीं जिन्होंने हिट फिल्मों के फायदे में एक हिस्से की बात निर्माता निर्देशकों के सामने रखी। उनकी आत्मकथा शोबेर आमी नोमी यानी सभी को मेरा नमन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी बात रखने में निडर थीं।

आनंद देवी अपने अभिनय जीवन में एक लंबे समय तक बांग्ला फिल्मों में सक्रिय रहीं। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मी दुनिया का रुख किया। ये उनके जीवन का वो समय भी रहा जब उन्होंने खुद को हर करार से मुक्त करके अलग अलग निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में काम करने का साहस किया। आगे चलकर कानन देवी ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और अपना एक बैनर शुरू किया जिसका नाम रखा श्रीमती पिक्चर्स।

कानन देवी की कई फिल्में बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ बनी और दोनों ही इंडस्ट्री में हिट भी रहीं। उनकी कुछ ऐसी ही फिल्मों में शामिल हैं विद्यापति, मुक्ति, स्ट्रीट सिंगर, लगन, सपेरा, जवाब और अनन्य। कानन बाला के नाम से फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे उन्हें कानन देवी का नाम मिल गया और वो इसी नाम से मशहूर हैं। कानन देवी उस जमाने के तकरीबन सभी मशहूर सितारों के साथ फिल्मों में नजर आईं। इनमें नाम शामिल हैं कुंदनलाल सहगल, पंकज मलिक, पहाड़ी सान्याल, छवि बिस्वास, पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर, अशोक कुमार और न्यू थिएटर के मालिक प्रथमेश चंद्र बरुआ, जिनके साथ उनकी कई फिल्में आईं।

आनंद देवी संगीत से पहले ही जुड़ी हुई थीं और उनकी आवाज भी लोगों के दिलों तक पहुंचा करती थीं। लेकिन उनके संगीत जीवन में एक मोड़ तब आया जब वो मिली संगीत के जादूगर रायचंद बोराल से। आरसी बोराल ने कानन देवी को हिंदी की बारीकियां भी सिखाई और उन्हें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत और भारतीय संगीत सीखने के लिए भी प्रेरित किया। कानन देवी ने उस्ताद अल्ला रखा से संगीत की तालीम ली। उनकी आवाज में अब मधुरता के साथ साथ रियाज का जादू भी नजर आने लगा। बात जब कानन देवी के गायन की हो रही है तो यहाँ जवाब फिल्म में उनका गाया वो गीत याद आता है जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। तो चलिए सुनते हैं वो गीत।

कानन देवी की आवाज में ये इकलौता ऐसा गीत नहीं है जिसे चाहने वालों ने रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने ये काम इसके बाद भी कई बार किया। एक समय आया जब कानन देवी को अभिनय से अलग एक गायिका के रूप में सम्मान मिला और ये वो समय था जब मेगाफोन ग्रामोफोन ने एक गायिका के रूप में उन्हें रिकॉर्ड्स के लिए अनुबंधित किया। सफलता एक ओर लोगों के मन में घमंड भी ले आती है, लेकिन कानन देवी ऐसी नहीं थी। मौका मिला तो उन्होंने इसे जिम्मेदारी समझी और तैयारी के लिए उन्होंने भीमसेन चटर्जी और आनंदी दस्तीदार से संगीत की तालीम ली। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब कानन देवी को उस दौर में उनके गीतों के रिकॉर्ड्स की बिक्री के कारण हर 3 महीने में रॉयल्टी के 25,000 रुपए मिलते थे।

कानन देवी एक ओर जहां लगातार सफलता हासिल कर रही थीं, वहीं वो फिल्मी दुनिया और समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी लगातार विचार कर रही थीं। उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने वाली वृद्ध अभिनेत्रियों के भरण पोषण के लिए महिला शिल्पी महल नामक संस्था की स्थापना की और उसे अपने खर्च पर लंबे समय तक चलाती रही। उन्होंने अपने काम में खुद को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी के साथ साथ संस्कृत साहित्य की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, अंग्रेजी सीखना, विदेश में जाकर फिल्मों से जुड़े कई विषयों की शिक्षा भी ली। ये बताता है कि वो केवल सफलता के पायदान ही नहीं चढ़ रही थीं, बल्कि अपने निजी उत्थान और खुद को तराशने की दिशा में भी काम कर रही थीं, जिसका असर भी पूरी तरह नजर आ रहा था।

कानन देवी ने अपने जीवन में जब भी ये महसूस किया कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ तो उन्होंने उस ओर कोई न कोई ऐसा निर्णय भी लिया जिससे आगे आने वाली अभिनेत्रियों के सामने एक मिसाल कायम हुई। जैसे कि उन्होंने जब फिल्मी दुनिया में अभिनेताओं के समान मेहनत आने की बात की तो उन्हें मना कर दिया गया। ये बात उन्हें नागवार गुजरी और उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना काम करने की ठान ली। उनका ये कदम उनके सशक्त व्यक्तित्व को दर्शाता है।

अपनी खूबसूरती, अदाकारी और गीतों के लिए मशहूर कानन देवी ने फिल्मों में भी अलग अलग किरदार निभाए। उस जमाने में प्रचलित घरेलू और बेचारी महिला का किरदार उन्होंने जितनी आसानी से निभाया, उतनी ही सरलता से वो एक मॉडर्न और सशक्त विचारों वाली महिला के किरदारों में भी ढली। पर्दे पर उनके किरदार महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बनकर सामने आया करते। वो निजी जीवन में भी इसी तरह सशक्त, प्रगतिशील विचारों का आईना बनकर सामने आती।

को स्वतंत्रता मिली तो लंदन के हाई कमीशन में इस समारोह में मुख्य अतिथियों में से एक बनकर वो शामिल हुई। उनके गीत और भाषण इस समारोह में भारतीय गर्व को बढ़ा रहे थे। कानन देवी एक बहुचर्चित सोप कंपनी के विज्ञापन में भी ली गई, जिसे आज तक केवल चर्चित अभिनेत्रियों को शामिल करने के लिए जाना जाता है।

0: प्यार नहीं मानूंगी बात त्योहार।
1: कानन देवी को फिल्मी दुनिया में उनके योगदान के लिए 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1976 में उन्हें फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा भी समय समय पर वो कई सम्मान पाती रहीं। कानन देवी 17 जुलाई 1992 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं और अपने पीछे छोड़ गईं अपनी बहुमूल्य विरासत और सशक्त सोच।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और गायिका कानन देवी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम का संपादन सौरव घारू। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों

0: का इलाज भी होता था।
1: संगीतकार नौशाद।
0: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा।

तो अभी आपने सुना यशुदास और हेमलता के आवाज में इस गीत को, और आई कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर के आवाज में गाए प्रोग्राम का अगला नगमा।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम एक फिल्म से।

तो आज हम सुनेंगे इस कार्यक्रम में आन मिलो सजना फिल्म के गीतों को। तो आइए शुरू करते हैं और सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में गाए प्रोग्राम का पहला नगमा।

तो अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में गाए इस गीत को और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गाए प्रोग्राम का अगला नगमा।

0: तो अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में गाए इस गीत को, और प्रोग्राम का आखिरी नगमा हम आपको सुना रहे हैं, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालन

0: अंदर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक इलाके से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि यह यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।